आकाशवाणी बीकानेर का ढोलमरु चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि तदनुसार दिनांक 12 जून सन 2026। प्रातः के इस वक्त 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का विचार। विषय है झूठ का परित्याग करें। आलेख और वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।
2: सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। फिर भी हमारे बीच अक्सर देखने में आता है कि हम जरा सी आसानी प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। झूठ आकर्षित करता है, झूठ सरल दिखाई देता है। हमें लगता है झूठ बोलने से कठिनाई का हल निकल आएगा, इसीलिए आमतौर पर सांसारिक व्यवहार में लोग बाग झूठ का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि झूठ बोलना सरल दिखाई देता है। कई बार तो बोलने वाले को अचेतन में यही लगता रहता है कि वो सच बोल रहा है और उससे बड़ा सत्य वक्ता कोई दूसरा नहीं। लेकिन क्या झूठ बोलना सरल है? नहीं, झूठ बोलना एक दुरूह मानसिक जटिलता है। एक झूठ के पीछे हजार झूठ बोलने पड़ जाते हैं, बल्कि हम बोलते ही चले जाते हैं। एक पर्दे के पीछे हमें दूसरा फिर तीसरा पर्दा टांगना पड़ता है। इस प्रकार से हमारा पूरा व्यक्तित्व ही लुप्त हो जाता है और हम अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ लेते हैं। हमें झूठे नकाबों से प्रेम हो जाता है। हम अपने आप को संसार में सफल मानने लगते हैं। हमें लगता है कि हम विजेता हैं, लेकिन होता ठीक इसके उलट है। लोक में कहावत है, सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। झूठ बोलने वाला व्यक्ति संदिग्ध और अप्रामाणिक होता चला जाता है, उसका विश्वास खंडित हो जाता है और लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। वो अंततः अपने ही भीतर अकेला और अलग थलग पड़ जाता है। एक बात और, झूठे से झूठा व्यक्ति भी अपने अधीनस्थ लोगों से सच बोलने की उम्मीद रखता है। वो इसके लिए दबाव बनाता है और झूठ बोलने वाले पर क्रोध करता है। वो ये भूल जाता है कि वह भी तो झूठ के आश्रय में पल रहा है, लेकिन ये एक आदत बन जाती है, एक ऐसी आदत जो उसे अपने स्वभाव की तरह प्रिय लगती है। हाँ ठीक है, देखने में झूठ एक बार सम्मान और प्रतिष्ठा का कारण बनता दिखाई देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता। किसी रोज सूर्य आंख खोलता है और बाजी पलट जाती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, झूठा अपना मुंह लेकर रह जाता है। वैसे उपनिषदों की भी यही घोषणा है, ना सतो भावो विद्यते, यानी सत्य का अभाव नहीं रहता और असत्य का अस्तित्व। सत्य ईश्वर है, उसका कभी अभाव नहीं रहता, वो सर्वकाल सर्वदेश में विद्यमान है। जबकि झूठा ये संसार डबरे के पानी की तरह सूखता हुआ सारहीन हो जाता है। संसार हमें एक दिन छोड़ना पड़ता है, जबकि ईश्वर हमें कभी अपने आप से अलग नहीं करता। इसलिए ईश्वर यानी सत्य का पक्ष लें, सत्य के पक्ष में जिए और सत्य की ही रक्षा करें, ताकि सत्य हमारी रक्षा कर सके। पूज्य बापू महात्मा गांधी ने तो अपनी आत्मकथा का शीर्षक ही सत्य के प्रयोग रखा। उन्होंने सत्य को एक गहरे और निरंतर प्रयोग के रूप में लेकर जीवन में सत्य की स्थापना की। तभी हम देखते हैं कि गांधी जी जैसा महात्मा उनके बाद अब तक आविर्भूत नहीं हुआ है। सत्य दीर्घजीवी और सनातन है, जबकि झूठ अल्पजीवी और काल से बंधा हुआ है। हम झूठ बोलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, स्वयं को ही आहत करते हैं, फिर भी हम असत्य पर मोहित रहते हैं। आइए कोशिश करें कि हम असत्य का दामन छोड़कर सत्य का साथ दें, ताकि सत्य हमारा साथ दे सके।

अभी आप सुन रहे थे झूठ का त्याग करें विषय पर आज का विचार। आलेख और वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में पहले सुनिए अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना ये भक्ति गीत। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति गीत।
1: प्रभु

शरण के गाइस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मरो चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आप प्रस्तुत है तुलसीकृत रामचरितमानस गान का ससुर पाठ। कार्यक्रम आज आपको सुनवा रहे हैं बालकांड के दोहा संख्या 148 से दोहा संख्या 150 की अंतिम चौपाई तक का ससुर पाठ। कार्यक्रम के संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

दीर्घकाल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि की भक्ति बिना जीवन अकारत बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपत्ति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपत्ति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मन चाह वरदान प्राप्त हुआ।

सुन रहे थे तुलसीकृत रामचरितमानस गान का सासुर पाठ। मुख्य कार्यक्रम में आज आपने सुना बालकांड के दोहा संख्या 148 से 150 की अंतिम चौपाई तक का सासुर पाठ। संगीतकार थे सतीश भाटिया।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी सभा में सवेरे 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक भजन। सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय रहेगा कद्दू वर्गीय सब्जियां। जानकारी देंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा। दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा सवेरे 7:00। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कुछ जानकारी, योग करे स्वस्थ और बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की सीमितता। साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता, बाल श्रम मुक्त बचपन, हर बच्चे का अधिकार। वार्ताकार होंगे श्री आनंद नारायण पुरोहित। फिल्म संगीत सुनेगा सवेरे 7:30 पर। सवेरे 10:00

सौरभ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता युवा का जीवन में महत्व। वार्ताकार होंगे श्री शिवशंकर सैनी। सुगम संगीत सुनेगा सवेरे 8:45 पर और लोक संगीत का समय रहेगा सवेरे 9:10। गांधी चर्चा कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:15 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अहिंसा की समस्या विषय पर गांधी जी के विचार। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर।

दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और 12:40 पर आप आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत, समय रहेगा दिन में 1:00। माफ कीजिए, दिन में 1:05 कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, कानूनी मदद एवं हेल्पलाइन, शिक्षा का अधिकार और खाने में संपूर्ण पोषण। साथ ही आप सुनेंगे 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक पॉइंट वार्ता, बच्चों और किशोरों में बढ़ता स्क्रीन टाइम और अभिभावकों की भूमिका विषय पर डॉक्टर मंजू कंवर राठौड़ से श्री संदीप कुमार पारीक की बातचीत आप सुनेंगे। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन होगा श्री अमित सिंह का। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और हमारी ये सभा संपन्न होगी दिन में 3:00। दूसरी सभा में हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, समय रहेगा संध्या 5:05। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधी बीमारियों का प्रबंधन। लघु जानकारी के विषय रहेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, मशीन लर्निंग और नवीकरणीय ऊर्जा। साथ ही आप सुनेंगे लेखन का अभ्यास करें और आखिर में रोजगार समाचार और क्विज टाइम। फिल्म संगीत सुनेगा संध्या 6:05 पर और रात्रि 8:00। ग्रामीण श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत, समय रहेगा संध्या 7:45। चर्चा के विषय रहेंगे बरसात से

0: पूर्व पशु टीकाकरण जरूरी, वन और वन्य जीव संरक्षण और मेक इन इंडिया। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे स्थानीय नाटक जाहिदा और जानकी, लेखक होंगे श्री विनोद कृष्ण भट्ट। उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से रात्रि 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे रीता गांगुली की ठुमरी। समय रहेगा रात्रि 10:30। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियां। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा।
1: किसान भैया राम राम। आज बात करा कद्दू वर्गीय सब्जियां बारे में। बेलाड़ी जकी सब्जियां होया करे है, इमें शामिल है लौकी, तोरई, तरबूज, खरबूजा, पेठा, खीरा, टिंडा, करेला। और इन खेती जकी है मैदानी भागार महीने गर्मी रे मौसम रे महीने मार्च लेर जून महीने तक करी जा करे। अब जून महीनो चाल रियो है, यानी अब पछेती फसल री बुआई करी जा सके। ई फसल री अगेती खेती ज्यादा फायदो देवे, क्योंकि अगेती फसल री पैदावार जकी है आ गर्मी री शुरुआत रे महीने आवन लाग जावे और गर्मी री शुरुआत रे महीने इरी बाजार रे महीने मांग रेवे। पण पोली हाउस तकनीक रे महीने हर मौसम रे महीने सब्जियां री नर्सरी रे महीने कद्दू वर्गीय सब्जियां तैयार जा सके। और हर मौसम मैंने इस सब्जियां ने उगाने वास्ते पहली पौध तैयार करनी चाहिए और पछे जको है जड़ा ने बिना नुकसान पहुंचे इरो रोपण कर पैदावार लेनी चाहिए। सबसे पहली बात करा यारी उन्नत किस्म का ही है खीरे री जकी उन्नत किस्म है, बीमे शामिल है पोइसेंट, जापानीज, लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग और पूसा उदय। ऐसा खीरे री संकर किस्म और उन्नत किस्म। अबे बात करा लौकी री उन्नत किस्म। लौकी री उन्नत किस्म में है पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि, PSPL और पूसा हाइब्रिड 3। करेला री संकर किस्म और उन्नत किस्म में शामिल है सा पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड 1 और पूसा हाइब्रिड 2। तोरू री उन्नत किस्म में है पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा, पूसा चिकनी, पूसा नसदार, सतपुतिया, पूसा नूतन और Co-1 यानी Co-1। 56 कद्दू अगर कोई लेना चाहे आप 56 कद्दू भी किया करे है तो बिरी किस्म में है ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, पेटी पेन, अर्ली येलो, पूसा अलंकार और प्रोलिफिक। और कद्दूरी जो की दूसरी किस्म है बीमावे पूसा विश्वास, पूसा विकास, अरका चंदन और पूसा हाइब्रिड 1। अगर बात करा कद्दू वर्गीय सब्जियां रे खाद रे बारे में तो ज्यादातर बेल वाली सब्जियां जगी है इन्हें खेत रे महीने ही पहली तैयारी करी जाए और 15 लेर 20 टन प्रति हेक्टेयर दरसों गोबरी खाद और 80 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास री अड़ी जगो है एक हेक्टेयर में मैंने पड़िया करे। बीज री बुआई जकी है लगभग 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 उलेर 40 सेंटीमीटर गहरी नालिया बना रहे पचे करनी चाहिए। एक नाली सो दूसरी नाली री दूरी जकी है फसल रे बेल री बढ़वार रे हिसाब सो 150 लेर 5 मीटर तक रखनो चाहिए। बुआई सो पहली नालिया रे मैंने पानी दे दो, फिर बाद रे मैंने बुआई करनी चाहिए। नाली रे मैंने नमी री मात्रा बीज बुआई रे वास्ते उपयुक्त हो इर वास्ते बुआई रे स्थान मते मिट्टी भुरभुरी कर और पछे जको है आधे उलेर 1 मीटर की दूरी मते बीज री बुआई करनी चाहिए। बुआई रो समय जको है सामान्यतः बसंत और गर्मी री फसल जकी है फरवरी मार्च में होया करे है, पण जून अंत तक इरी बुआई करी जा सके। सिंचाई जकी है अड़ी सारू करनी चीज है और सिंचाई करने रे सागे सागे निराई गुड़ाई भी आपने काम करते रहना चीज है। बात थोड़ी देर पहले करी पोली हाउस री बारे में खेती री। तो पोली हाउस से खेती करने वास्ते अगेती फसल और पछेती फसल दोनों ही फसला तैयार करी जा सके। इमें झोपड़ी आकार एक पोली हाउस हुए वो बनार बीर मैंने पहली पौध तैयार करे जे और पछे जो को है 15 सोलेर 20 सेंटीमीटर आकारी थैलियां होया करे है बिने अपन उगानो है और जमीन रे मैंने मिट्टी बालू और गोबर यहाँ सगड़ा री बराबर मात्रा में मैंने मिला और पछे जमीन तैयार करनी है, जल निकासी रे चौकी व्यवस्था कर दी है और बीर बाद रे मैंने बुआई करनी है। 4 सप्ताह मैंने पौधा जो को है खेती रे योग्य हो जावे बीर बाद रे मैंने थैलियां मैंने जकी फसल उगी है बिने बीच जगह हटार और दूसरी जगह बुआई करनी है, यानी नर्सरी रे मैंने पहली पौध तैयार करना है पछे उगानो है। बीज री दर जो है हर किस्म रे मैंने अलग अलग हो सके है। खीरे रे मैंने सामान्यतः 225 लेर 250 किलो, लौकी रे मैंने 4 लेर 5 किलो, करेले रे मैंने 6-7 किलो, कद्दू में 3-4 किलो, तोरू में 5

0: पांचों 5.5 किलो और 56 कद्दू में 5.6 किलो प्रति हेक्टेयर दरसों आपने अड़ी पड़े। अगर उपज की बात करा, खीरो एक हेक्टेयर मैंने 100 लेट 200 क्विंटल तक हो जाए, लोकी 250 लेट 125 क्विंटल तक हो सके, करेलो जो को है 75 लेट 120 क्विंटल तक हो सके, कद्दू जो को है 250 लेट 500 क्विंटल तक और तोरु 100 लेट 130 क्विंटल तक और 56 कद्दू 50 लेट 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सके। कटाई रे बाद मैंने भी कई बातें हैं जगह ध्यान रखना है के तुड़ाई भी बगत करनी चीज है, जगह बगत घिया खीरा तोरु करेला जो है कच्चा और मुलायम हो, तुड़ाई कैंची री मदद सो करनो चीज है, खींच रही तोड़ना चीज है और डंठल सहित फला ने तोड़ना चीज है। बिर बाद मैंने रंग और आकार आधार पर श्रेणी बना लो बिने और बिने ग्रेडिंग करनो बोलिया करे है के अलग अलग रंग अलग अलग आकार ने एक श्रेणी में राख पच बिया ने बेचन जावा तो चोखा भाव आपने मिल जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे कद्दू वर्गीय सब्जियों का कार्यक्रम, कद्दू वर्गीय सब्जियों पर जानकारी कार्यक्रम था, खेती की बातें और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए लोक भजन, कलाकार हैं गणेश नाथ।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन, कलाकार थे गणेश नाथ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः 6:55 होने वाले हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी अपनी रेडियो सखी रेखा भाटी का नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, नई सुबह नई किरणों के साथ आज लेकर आई हूं मैं विचारों की, जागरूकता की और प्रेरणा से भरी एक खास प्रस्तुति। श्रोताओं, जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे विषयों की जो केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि अपने देश के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। तो अगले कुछ पलों तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बात होगी बाल श्रम की चुनौती की, वहीं योग की शक्ति की और जनसंख्या जागरूकता की आवश्यकता पर। तो आइए ज्ञान, संवेदना और सकारात्मक सोच के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: श्रोताओं, कहते हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और आज हम मना रहे हैं और बात कर रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की। प्रतिवर्ष की अगर हम बात करें तो 12 जून को दुनिया भर में बाल श्रम की गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने और उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 में इस दिन की शुरुआत की थी ताकि कम उम्र के बच्चों को श्रम बाजार में जाने से रोका जा सके। श्रोताओं, इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाल अधिकारों की रक्षा। यह दिन उनके बचपन, शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिलाने पर जोर देता है ताकि उन्हें काम के बोझ से बचाया जा सके। साथ ही इसका उद्देश्य समाज, सरकारों और उद्योगों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा से जोड़ना। और इस दिन का सबसे मुख्य लक्ष्य है बाल श्रम मुख्य रूप से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण पनपता है, और यह दिन हमें याद दिलाता है कि बच्चों के हाथों में किताबों का होना जरूरी ही नहीं बल्कि आवश्यक है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का आने वाले कल का भविष्य है। श्रोताओं, इसी विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता बाल श्रम मुक्त बचपन, हर बच्चे का अधिकार। वार्ताकार हैं श्री आनंद नारायण पुरोहित।
1: हम सब ने कभी ना कभी अपने आसपास छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। कोई बच्चा चाय की दुकान पर गिलास धो रहा होता है, तो कोई होटल में बर्तन उठा रहा होता है, कोई ढाबे पर ग्राहकों को पानी दे रहा होता है, कोई खेती में मजदूरी कर रहा होता है, तो कोई सड़क किनारे सामान बेचता दिखाई देता है। कई बार हम यह दृश्य देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा रुककर सोचें तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, जिस उम्र में उस बच्चे को स्कूल

में होना चाहिए था, वह काम पर क्यों है? यही सवाल हमें बाल श्रम की गंभीरता समझाता है। बाल श्रम का अर्थ केवल यह नहीं कि कोई बच्चा काम कर रहा है। बाल श्रम का वास्तविक अर्थ है ऐसा कार्य जो बच्चे की उम्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए हानिकारक हो। जब कोई बच्चा पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगे, जब काम के कारण उसका बचपन, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे, तब वह बाल श्रम कहलाता है। बचपन जीवन का वह समय है जब बच्चे को प्यार, सुरक्षा, शिक्षा और अवसर मिलने चाहिए। बच्चे के मन में सपने होते हैं, जिज्ञासा होती है, सीखने की इच्छा होती है, वह दुनिया को समझना चाहता है, लेकिन बाल श्रम उस बच्चे से यह सब छीन लेता है। जिस हाथ में पेंसिल होनी चाहिए उसमें औजार दे दिए जाते हैं, जिस कंधे पर स्कूल बैग होना चाहिए उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है। बच्चा केवल अपने माता पिता की जिम्मेवारी नहीं होता, वह समाज और राष्ट्र की भी जिम्मेवारी होता है। आज के बच्चे ही कल का भारत बनाते हैं। यदि बच्चे शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तो देश का भविष्य मजबूत होगा, लेकिन यदि बच्चे कम उम्र में ही मजदूरी में लग जाएंगे तो उसका विकास अधूरा रह जाएगा और देश की प्रगति भी प्रभावित होगी। बाल श्रम के पीछे सबसे बड़ा कारण गरीबी है। कई परिवार ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, घर में भोजन, कपड़ा, इलाज और अन्य जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में माता पिता कई बार मजदूरी में बच्चों को काम पर भेज देते हैं। वे सोचते हैं कि बच्चा कुछ कमाएगा तो घर का खर्च चलाने में मदद मिलेगी। यह स्थिति दुखद होती है क्योंकि गरीबी का बोझ सबसे ज्यादा बच्चों के बचपन पर पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण है अशिक्षा। कई परिवारों में शिक्षा के महत्व को उतनी गंभीरता से नहीं समझा जाता। कुछ लोग यह मान लेते हैं कि पढ़ाई से तुरंत पैसा नहीं मिलता, इसलिए बच्चों को काम पर लगा देना बेहतर है, लेकिन यह सोच बच्चे के भविष्य को सीमित कर देती है। शिक्षा तुरंत ही भले ही आय न दे, लेकिन भविष्य में सम्मान, आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन का रास्ता खोलती है। इसके साथ ही बेरोजगारी, सामाजिक जागरूकता की कमी, बड़े परिवारों का आर्थिक दबाव और सस्ती मजदूरी की मांग भी बाल श्रम को बढ़ाते हैं। कुछ नियोक्ता बच्चों को इसलिए काम पर रखते हैं क्योंकि उन्हें कम पैसे देने पड़ते हैं। बच्चे अक्सर अपने अधिकार नहीं जानते, इसलिए वे शोषण का विरोध भी नहीं कर पाते। बाल श्रम का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह केवल बच्चों की आज की स्थिति को नहीं बिगाड़ता, बल्कि उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। काम करने वाले बच्चों को अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता है। कई बार उन्हें आराम नहीं मिलता, सही भोजन नहीं मिलता और सुरक्षित वातावरण भी नहीं मिलता। इससे उनका स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। कई बच्चे खतरनाक स्थानों पर काम करते हैं। कई मशीनों का डर होता है, कहीं गर्म तेल और आग का खतरा, कहीं धूल और रसायनों का प्रभाव, तो कहीं भारी सामान उठाने की मजबूरी। ऐसी परिस्थितियों बच्चों के शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। कम उम्र में कठोर श्रम करने से उनकी वृद्धि, शक्ति और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। बाल श्रम बच्चों के मन पर भी भारी असर डालता है। जब बच्चे अपने जैसे अन्य बच्चों को स्कूल जाते, खेलते और हंसते देखते हैं, लेकिन स्वयं काम में लगे रहते हैं, तो उनके मन में हीन भावना, उदासी और निराशा पैदा हो सकती है। धीरे धीरे उनका आत्मसम्मान कम होने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद उनके जीवन इसी काम तक सीमित है। सबसे बड़ी क्षति शिक्षा की होती है। शिक्षा से दूर हुआ बच्चा अपने अधिकार, अवसर और संभावना खो देता है। बिना शिक्षा के वह आगे चलकर बेहतर रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप वह गरीबी के उसी चक्र में फंसा रहता है। इस प्रकार बाल श्रम गरीबी को कम नहीं करता, बल्कि कई बार उसे आगे बढ़ाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बाल श्रम को समाप्त करना और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार दिलाना है। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना प्रतिबंधित है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को

0: निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान भी बच्चों की सुरक्षा पर विशेष बल देता है। अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाए जाने से रोकता है और अनुच्छेद 21 का बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून भी बच्चों को शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कानून तभी सफल होते हैं जब समाज उनका साथ देता है। यदि कोई बच्चा हमारे सामने काम कर रहा है और हम चुपचाप उसे अनदेखा कर देते हैं तो कानून अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है। बाल श्रम रोकने के लिए सबसे पहले हमें बच्चों को स्कूल से जोड़ना होगा। स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि वह बच्चे के जीवन को दिशा देने वाला केंद्र है। वहां बच्चा अनुशासन सीखता है, आत्मविश्वास पाता है, मित्र बनाता है और अपने भविष्य के लिए तैयार होता है। इसलिए हर बच्चे का स्कूल जाना आवश्यक है। दूसरी आवश्यकता है परिवारों को आर्थिक रूप से सहारा देना। जब परिवार की आय बेहतर होगी तो बच्चे को मजदूरी करने की जरूरत कम होगी। गरीब परिवारों तक रोजगार, सरकारी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा और सहायता सही तरीकों से पहुंचे, यह बहुत जरूरी है। तीसरी जरूरत है जागरूकता। समाज को समझना होगा कि बाल श्रम कोई छोटी बात नहीं है, यह एक बच्चे के अधिकारों का हनन है। किसी बच्चे से मजदूरी करवाना उसकी मजबूरी का फायदा उठाना है। हमें लोगों को समझना होगा कि बच्चे काम करने के लिए नहीं सीखते और आगे बढ़ने के लिए होते हैं। चौथी बात है बाल श्रमिकों का पुनर्वास। यदि कोई बच्चा मजदूरी से मुक्त कराया जाता है तो उसे केवल काम से हटाना पर्याप्त नहीं है, उसे फिर से स्कूल में प्रवेश दिलाना, पढ़ाई में सहयोग देना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और मानसिक रूप से संभालना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे कई बार डर, असुरक्षा और संघर्ष से गुजर चुके होते हैं। उन्हें सहानुभूति और सहयोग की जरूरत होती है। हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और यह हमें याद दिलाता है कि बच्चों के अधिकारों का केवल कागजों में नहीं जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। यह दिवस हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हमारे आसपास कोई बच्चा अपने अधिकारों से वंचित तो नहीं है। बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की ही नहीं, यह हम सभी की जिम्मेवारी है। घर, परिवार, विद्यालय, समाज, प्रशासन और नागरिक सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। यदि हम किसी बच्चे को मजदूरी करते देखें तो हमें संवेदनशीलता के साथ कदम उठाना चाहिए। संबंधित अधिकारी या बाल संरक्षण से जुड़ी संस्था को सूचित करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बाल श्रम करने वाला बच्चा दोषी नहीं है, वह परिस्थितियों का शिकार है। उन्हें अपमान की नहीं अवसर की जरूरत है, उन्हें दया की नहीं अधिकार की जरूरत है। उसे मजबूरी से निकालकर शिक्षा और सम्मान की ओर ले जाना ही हमारा असली कर्तव्य है। किसी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि बच्चे सुरक्षित हैं, शिक्षित हैं और खुश हैं तो समाज सच में प्रगतिशील है। लेकिन यदि बच्चे मजदूरी में लगे हैं तो हमें अपने विकास का दोबारा विचार करना होगा। बाल श्रम मुक्त बचपन हर बच्चे का अधिकार। बाल श्रम बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास के अधिकारों का उल्लंघन है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए जनता और सरकार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारी जिम्मेदारी भी है। बाल श्रम का विरोध करना, किसी भी दुकान, होटल, कारखाने या घर में बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए, शिकायत दर्ज कराना चाहिए। कहीं भी बाल श्रमिक दिखाई देने पर संबंधित अधिकारियों या हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देनी चाहिए। गरीब परिवारों की सहायता करना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता कर बच्चों को काम करने के बजाय पढ़ने के अवसर देना चाहिए। सामाजिक जिम्मेवारी निभाना, बच्चों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। कुछ सरकारी जिम्मेवारियां भी हैं, जैसे कानून का सख्ती से पालन कराना, निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, गरीब परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाना, बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा नियमित निरीक्षण करना और जन जागरूक अभियान चलाना। बाल श्रम मुक्त भारत का निर्माण तभी संभव है जब जनता और सरकार मिलकर कार्य करे। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पूर्ण जीवन का अधिकार है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम बाल श्रम का विरोध करें और हर बच्चे को खुशहाल बचपन प्रदान करने में सहयोग दें।
1: श्रोताओं, बाल श्रम के

शपथ। विश्व बाल श्रम दिवस पर आइए हम सभी अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करें और बाल श्रम का अंत करें। आए आओ हम मिलकर ये संकल्प लें कि बाल श्रम को जड़ से मिटा दें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाल श्रम मुक्त बचपन हर बच्चे का अधिकार विषय पर यह वार्ता। वार्ताकार थे श्री आनंद नारायण पुरोहित, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की और संयोजन था श्री अमित सिंह का।

बताते हैं कि योग हमारे शरीर को रखता है निरोग। जी हाँ, योग से हम हर दिन को बहुत ही ऊर्जा से और अपने तन मन और दिमाग की जो मानसिकता है उसको बदलने का भी साहस रखता है हमारा योग। श्रोताओं कहते हैं कि योग हमें तन की शक्ति, मन की शांति और आत्मा की जागृति प्रदान करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की अगर हम बात करें तो तनाव भरी इस जिंदगी में योग एक ऐसा साथी है जो तनाव को संतुलन में और चिंताओं को आत्मविश्वास में बदल देता है। यकीनन योग हमें सिखाता है कि असली स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का नाम है। अगर रोज कुछ मिनट का योग हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, एकाग्रता और नई उमंग से भर सकता है। श्रोताओं कहते हैं कि योग को अपनाइए और स्वस्थ जीवन का दीप जलाइए, क्योंकि योग न केवल एक शारीरिक क्रिया है बल्कि ये एक जीवनचर्या है। जी हाँ, स्वस्थ जीवन का दीप जलाइए, तन को निरोग और मन को प्रसन्न और जीवन को सफल बनाइए। श्रोताओं, सूरज की पहली किरण के साथ जब शरीर और मन योग से जुड़ते हैं तब जीवन और जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का नया सवेरा होता है। तो आइए योग केवल एक दिन नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। करें योग, रहे निरोग, यही है स्वस्थ और सफल जीवन का सबसे सरल मंत्र।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, घड़ी हमें इशारा कर रही है कि सुप्रभात के संग को यहीं देना होगा विराम। तो चलते चलाते इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन वास करता है और योग वो सेतु है जो हमें स्वास्थ्य संतुलन

और सुख की ओर ले जाता है। तो अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल खुद के लिए जरूर निकालिए और अपने जीवन को सुकून से और स्वास्थ्य से और खुशियों से भरिए और जीवन में सदा मुस्कुराते रहिए। तो फिलहाल इजाजत दीजिए रेखा पटी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल अमरु चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:30 हुई है। अब सुनिए फिल्म संगीत प्रोग्राम का पहला गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत को लिखा है नरेंद्र शर्मा ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सुनिए, खयाम के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है जान निशार अख्तर ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है नूरी।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोल नगर चैनल से सुन रहे हैं। निजी कार्यक्रम में आप सुनिए एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

राम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, फिल्म का नाम है पेंगेस्ट और गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा।

0: साथ रफीक के गाय फिल्म यकीन के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये डोरा मेरू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को अब आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभाग सुनेंगे।
1: और रूप बदल गया है, जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने

0: साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम

0: को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें

0: में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war.

मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पश्चिमी देशों में प्रसिद्धि के बाद भारत के अनेक योगाचार्यों ने वहां जाकर योग के प्रति लोगों को जागृत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज संपूर्ण विश्व भारत को योग गुरु मानता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तो प्रत्येक वर्ष 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की चंचलता को रोकना, उसे एकाग्र करना ही योग है। योग साधना के विभिन्न आयाम हैं, जिनमें ध्यान, आसन, यम एवं नियम प्रमुखता से गिनाए जाते हैं। योग सबसे पहले बाहरी शरीर पर काम करता है। जब हमारे अंग, मांसपेशियां एवं नसें आपसी सद्भाव में काम नहीं करके विरोध में काम करने लगती है, तब शारीरिक असंतुलन बनता है। शरीर के बाद योग का सीधा असर हमारे मानसिक एवं भावनात्मक स्तरों पर पड़ता है, क्योंकि यह तुरंत या तत्काल कोई प्रभाव हमारे मानसिक या भावनात्मक जीवन पर नहीं डालता, परंतु यह हमारे जीवन जीने की, सोचने की दिशा एवं दशा को परिवर्तित कर हमें हर स्थिति में शांत रहने में मदद करता है। मन को शब्दों से मुक्त करके अपने आप को शांति और रिक्तता से जोड़ने का ही एक तरीका है, जिसका नाम है योग। योग शब्द संस्कृत से आया है। योग के द्वारा हम अपने मन को एकाग्रचित करने का अभ्यास करते हैं। जब हमारा मन एकाग्र होने लगता है, तब हम शरीर के अनुभवों के पार निकलने लगते हैं। जैसे ही हम योग का अभ्यास करते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होने लगती है। चूंकि यह क्रियाएं स्वतः ही होती है एवं अनवरत होती रहती है, जैसे गर्मी लगना, खुजली चलना, पसीना होना आदि की अनुभूति होती है। जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होता जाता है, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ते चले जाते हैं और इन अनुभूतियों से परे हो जाते हैं। ध्यान गहरा होते होते हमारा मन स्थूल अनुभवों से परे एकांत एवं शून्यता की स्थिति में पहुंच जाता है, जहां पर हमें भौतिक अनुभूतियां नहीं होती। स्थूल शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तन हमें अनुभूत नहीं होते। जब योग के द्वारा हम ध्यान की उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब हमारे चेहरे पर कांति प्रकट होने लगती है। मैदा का हमारे ललाट पर स्पष्ट दृश्यावलोकन होने लगता है। योग का विशेष महत्व हमारे जीवन में विभिन्न आयामों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जो कि हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि मैं योग करूं ही क्यों, मैं तो स्वस्थ हूं, मेरे पास तो मानसिक तनाव भी नहीं है, शारीरिक रूप से भी कोई समस्या नहीं है और ना ही मेरे पास में समय है, मैं तो स्वस्थ भी हूँ, फिर मुझे योग की क्यों आवश्यकता है। योग हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। योग से आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एक तरफ सुख और दूसरी तरफ दुख होता है, वैसे ही एक तीसरा होता है आनंद, जिसे महसूस किया जा सकता है। जब हम पहली बार योग करते हैं, तब हमें आनंद क्या है इसकी अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति हमें भोग और विलास में नहीं होती, ना ही किसी अन्य क्षणिक सुखों में होती है, परंतु योग में हमें ये भरपूर मात्रा में होती है। अब योग शब्द जिसका मतलब ही यही है कि जुड़ाव किससे, आत्मा से और स्वयं से, यह तो है इसका एक प्रथम अर्थ। दूसरे अर्थ में जब कहते हैं हम ध्यान, समाधि, जब हम अपने शरीर को योग कला से जोड़ लेते हैं, तब हम ध्यान में उतर जाते हैं, और जब तक योग कला से नहीं जोड़ते, तब तक हम ध्यान में नहीं जा सकते। ध्यान योग का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान के माध्यम से शरीर और मस्तिष्क का संगम होता है। ध्यान का हमारे देश से ज्यादा विदेशों में डंका गूंज रहा है। आज के समय में जीवन यापन के लिए दिन रात भाग दौड़, काम का प्रेशर, रिश्तों में अविश्वास और दूरी आदि के कारण तनाव बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में ध्यान से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। ध्यान से मानसिक तनाव दूर होता है और मन को गहन आत्मिक शांति महसूस होती है, जिसे कार्य शक्ति में वृद्धि होती है, नींद अच्छी आती है, मन की एकाग्रता एवं धारणा शक्ति बढ़ती है। दुनिया में योग के नाम और प्रभाव से आज कोई अनजान नहीं है। विश्व को शहरीकरण के दौर में स्वस्थ रखने का एक रामबाण इलाज है, वो है योग, जिसके तर्ज पर ही 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। योग सभी के लिए जरूरी है। यह दर्शन और धर्म से परे है और गणित से तो बहुत ही कुछ ज्यादा है। पूरे विश्व को भारत की ही देन है योग। पूरा विश्व इसी कारण से भारत को आज विश्व गुरु मानता है और योग को अपना रहा है। इसलिए योग को किसी धर्म विशेष से ना जोड़ें, यह हमारे मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसके क्या क्या महत्व है उस पर हम चर्चा करते हैं। इसके नियमित अभ्यास से न केवल सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है, बल्कि नियमित योग करने से शरीर मजबूत होता है। सुबह दैनिक कार्य के पश्चात खुली हवा में बैठकर नियमित लगभग आधा घंटा योग करने से शरीर सुंदर और चुस्त दुरुस्त बनता है। योग से मन को शांति मिलती है, जिससे रक्त का संचार ठीक रहता है और हृदय भी स्वस्थ रहता है। हमारे शरीर को

लचीला और मजबूत बनाता है। जिम में अक्सर लोग जाते रहते हैं, परंतु जिम में जाकर हम किसी एक ही अंग का व्यायाम कर पाते हैं, जबकि योग से संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों ग्रंथियों तक का व्यायाम होता है, जिस वजह से हमारे शरीर के अंग सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। क्योंकि योग से हमारे शरीर के अंगों को बल मिलता है, इससे हमारा शरीर दिन प्रतिदिन लचीला और मजबूत होता जाता है। हम इससे तरोताजा और स्फूर्ति भी महसूस करते हैं। नियमित योग से हम खुद को प्रकृति के नजदीक महसूस करते हैं, जिससे हम पूरे दिन तरोताजा और स्फूर्ति महसूस करते हैं। मानसिक तौर पर भी हम शांत रहेंगे, जिससे तनाव भी हमसे दूर रहेगा। जब हम मन मस्तिष्क से शांत होते हैं तो तनाव भी हमसे दूर होता है। नियमित योग आसन और ध्यान से मस्तिष्क शांत होता है और शरीर संतुलित रहता है। दिमाग के दोनों हिस्से दुरुस्त काम करते हैं। योग करने से हमारे दिमाग के जो दो भाग हैं, दाहिना और बायां, ये दोनों दुरुस्त रूप से काम करते हैं। इसमें आंतरिक संचार ठीक होता है और आंतरिक सामंजस्य इसका ठीक रहता है। नियमित योग से सोचने की क्षमता और सृजनात्मकता वाले जो हमारे दिमाग के हिस्से हैं वो तेज होते हैं, संतुलन बढ़ता है, बुद्धि तेज और प्रखर होती है। साथ ही साथ हम आत्मनियंत्रण की शक्ति पर भी एक प्रभावी रूप से अपनी पकड़ बना सकते हैं। योग अभ्यास से चेहरे पर चमक आती है। रोज अगर हम योग करते रहें तो हमें रोगों से लड़ने की भी क्षमता मिलती है। खासकर बुढ़ापे में भी हम स्वस्थ बने रह सकते हैं और युवा नजर आते हैं। शरीर हमारा निरोग, बलवान और स्वस्थ बनता है। योग के नित्य प्रति अभ्यास से मांसपेशियों की अच्छी कसरत हो जाती है, जिस कारण से तनाव दूर होता है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, नींद अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है और पाचन भी हमारा सही रहता है। कब्ज नामक बीमारी हमारे आसपास नहीं आती। इससे नियमित अभ्यास से हमारे जीवन में तनाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। दर्द और मोटापा भी यह हमसे दूर रखता है। योग से शरीर तो लचकदार होता ही है, शरीर को शक्ति मिलती है। इसके नियमित अभ्यास से पीठ, कमर, गर्दन, जोड़ों के दर्द की समस्या तो दूर होती ही होती है। साथ ही योग हमारे शरीर की खराब मुद्रा की संरचना को भी ठीक कर देता है, जिससे भविष्य में होने वाले दर्द से बचा जा सकता है। नियमित योग करने से शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी पिघलती है एवं कैलोरी भी बर्न होती है, जिससे मोटापा घटता है, शरीर का वजन नियंत्रित रहता है। योग से श्वास की गति पर नियंत्रण बढ़ता है, जिससे सांस से संबंधित बहुत सारे रोगों में लाभ मिलता है, जैसे दमा, एलर्जी, साइनोसाइटिस, पुराना नजला, सर्दी, जुखाम आदि रोगों में तो प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है, जो कि योग का ही एक अंग है। ऐसे आसन जिनसे कुछ समय के लिए सांस को रोक कर रखा जाता है, जो हमारे हृदय, फेफड़े और धमनियों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। ऐसे आसन दिल को फिट रखते हैं। इससे फेफड़ों को ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और यह शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। विभिन्न प्रकार के योग और प्राणायाम से शरीर में रक्त का प्रभाव ठीक होता है। नित्य योग से मधुमेह का लेवल घटता है, जिससे कि शुगर नामक बीमारी खत्म हो जाती है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इस कारण मधुमेह के रोगियों के लिए योगा एक बेहद ही आवश्यक है। यही रक्त संचार से शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संवहन करता है, जिससे त्वचा और आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए तो यह रामबाण है। गर्भावस्था के दौरान नियमित योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर से थकान और तनाव दूर होता है, जो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। गर्भावस्था में होने वाली कोई भी समस्या, जैसे पीठ दर्द, कमर दर्द, पैरों में खिंचाव, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, अपच हो जाना, श्वास संबंधी बीमारियां हो जाना, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। और गर्भावस्था के दौरान किस महीने में कौन कौन सा हम योगा कर सकते हैं, इसकी सलाह आपको निश्चित ही अपने योगा चिकित्सक से, योगा एक्सपर्ट से लेनी चाहिए, या किसी योग्य व्यक्ति की निगरानी में ही आपको योग करना चाहिए, खासकर गर्भावस्था में। महिलाओं को अक्सर मासिक धर्म के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। योग के नित्य अभ्यास से मासिक धर्म में होने वाली पीड़ाओं से महिलाओं को मुक्ति मिलती है। पीरियड में नियमितता रहती है। शरीर में इस दौरान आलस नहीं आता, घबराहट नहीं होती, चक्कर आना जैसी समस्याओं से भी निजात मिल जाता है। और साथ ही साथ इन दिनों में शरीर में फुर्ती और चुस्ती भी आम दिनों की तरह ही बनी रहती है। योगा और ध्यान को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही अनिवार्य माना गया है। योग सिर्फ शरीर को जोड़ने, तोड़ने, मरोड़ने का नाम नहीं है। सनातन योग के अद्भुत फायदों का लोहा सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने माना है, क्योंकि योग के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर का संगम होता है। योग का अभ्यास हमारे मन को संयमी बनाता है। योगाभ्यास से दुबला पतला व्यक्ति भी ताकतवर और बलवान बन जाता है। योग आपको अनुशासन समझाता है। योग आप

मन को तैयार करता है। योग आपको मैच्योर बनाता है, आपको अंधकार से बचाता है। योग उनके लिए है जो अपने जीवन में सच में कुछ उन्नति करना चाहते हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हैं, जो इस ब्रह्मांड के सत्य को समझना चाहते हैं, जो शक्ति संपन्न होना चाहते हैं। और योग उनके लिए भी जरूरी है जो हर तरह से स्वस्थ होना चाहते हैं। योग आपको स्वस्थ और सुंदर बनाता है। अगर आप स्वयं से वचन लेते हैं तो यह आपका जीवन बदलने में प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। यदि आप स्वयं को बदलने के लिए वचनबद्ध हैं तो योग आपकी मदद अवश्य करेगा।

0: फायदेमंद है।
1: सौरभ ने अभी आप सुन रहे थे वार्ता योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार थे श्री शिव शंकर सैनी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत की हमारी आज की कलाकार हैं मिताली सिंह। तो आइए सुनते हैं इनकी गाई कुछ गजलें।

0: इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सुगम संगीत की हमारी आज की कलाकार थी मिताली सिंह। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 9 बजने को ही कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी।
2: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को दो

0: पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
1: देश में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। मंत्रालय ने बताया कि किसान 9140245981800 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में आगामी 1 और 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहलों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए और रजत पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा जन कल्याण में संसाधनों की कमी दूर की जा सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में चल रहे विशेष यातायात अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल 9703 वाहनों के खिलाफ एक ही दिन में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि सबसे ज्यादा 3638 मामले वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के दर्ज किए गए। इसके अलावा अवैध नंबर प्लेट, वाहनों पर अनधिकृत लेखन, मॉडिफिकेशन और अवैध हूटर बत्ती तथा प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। इधर राजस्थान पुलिस ने भी आम जन से जल्दी मुनाफे के लालच में बिना जांच पड़ताल के किसी अनजान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा निवेश नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया।

0: या है। कई जिलों में आंधी चलने और बारिश होने के समाचार हैं। डीग, धौलपुर और भरतपुर में तेज अंधड़ के साथ हल्की बरसात हुई, इससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं कोटपुतली बहरोड के कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। वहां तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: बहरोड क्षेत्र में देर शाम मौसम में बदलाव के कारण तेज हवा और तूफान के कारण दर्जनों पेड़, 80 से अधिक बिजली के पोल और 50 से अधिक ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण विद्युत वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई, जिसे सुधारने के लिए बड़ी संख्या में बिजली विभाग की टीमें देर रात तक विद्युत व्यवस्था बहाल करने में जुटी रही। बहरोड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण जहाँ आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं पारा भी लुढ़क कर नीचे आ गया। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपुतली बहरोड।
0: दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अब भी गर्मी और उमस का असर बरकरार है। कल जैसलमेर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। इस मौसमी बदलाव से आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। प्रदेश की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का कल निधन हो गया। वे 98 वर्ष की थीं। गौरी देवी का जन्म बाड़मेर के कोरण गांव में लोक कलाकार परिवार में हुआ। करीब 8 दशक तक वे मांड गायन के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। गौरी देवी ने देश भर में मांड गायन की प्रस्तुतियां देकर प्रदेश की लोक संस्कृति को एक नई पहचान दिलाई। वे भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके चर्चित गानों में बागा चालो केसरिया, सौ कोसों दूर बसे महारा साजन, आई आई सावणियरी तीज और केसरिया बालम पधारो शामिल है। उनके कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार प्रसारित होते थे। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। पाली के गवरी में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र AI सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के भूलो चैनल से बोल रहे हैं। मिलन वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 9:10 हुई है। समय है लोक संगीत का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं चंपा मिथी और पार्टी के गाए कुछ राजस्थानी लोकगीत।

सुन रहे थे चंपा मेथी और पार्टी के गाया ये राजस्थानी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का यूट्यूब नंबर चैनल है। सवेरे के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गांधी चर्चा कार्यक्रम में। आज आप सुनेंगे अहिंसा की समस्या विषय पर बापू के विचार। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की और संयोजन श्री अमित सिंह का।

गांधी चर्चा के तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज के इस अंक में हम लेकर आए हैं संपूर्ण गांधी वांग्मय से पूज्य बापू के अहिंसा की समस्या पर विचार, जो कि नवजीवन अखबार में 9/8/1925 को प्रकाशित हुए थे। बापू लिखते हैं, ऐसे प्रश्न मुझसे बार बार पूछे जाते हैं कि हमारे कार्य का स्वरूप कब क्या करने से अहिंसा का और कब क्या करने से हिंसा का हो जाता है। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनसे पूछने वाले का अज्ञान ही प्रकट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे प्रश्नकर्ता की भारी कठिनाई का परिचय मिलता है। एक पंजाबी भाई ने प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर यहाँ देने योग्य है। प्रश्न इस प्रकार है, शेर भेड़िए आदि आकर पशु और मनुष्य को उठा ले जाएं तो क्या करें? अगर पानी में कीटाणु आदि हो तो क्या करें? मेरी अल्प मति के अनुसार इसका साधारण उत्तर तो यही है कि जब शेर भेड़िए आदि का उपद्रव हो तो उनका नाश करना अनिवार्य है। पानी में मौजूद कीटाणुओं का नाश करना भी अनिवार्य है, लेकिन अनिवार्य हिंसा भी हिंसा के बजाय अहिंसा नहीं कही जा सकती। हिंसा तो हिंसा ही बनी रहेगी। यदि कोई शेर भेड़िए का नाश किए बिना अपना काम चला ले तो मैं बेखटके कहूंगा ये उत्तम है, पर ये कौन कर सकता है? वही जो शेर भेड़िए से डरता नहीं बल्कि मित्र की तरह उनमें मिल जाता है। जो डर के मारे हिंसा नहीं करता वो तो हिंसा कर ही चुका। बिल्ली के साथ चूहे का व्यवहार अहिंसा का व्यवहार नहीं है। उसका मन तो निरंतर बिल्ली के साथ हिंसा करता रहता है। निर्बल होने के कारण वो बिल्ली को मार नहीं सकता। हिंसा करने की पूरी सामर्थ्य रखते हुए भी जो हिंसा नहीं करता वही अहिंसा के धर्म का पालन करने की शक्ति से संपन्न है। जो मनुष्य स्वेच्छा और प्रेम भाव से प्रेरित होकर किसी की हिंसा नहीं करता वही अहिंसा धर्म का पालन करता है। अहिंसा का धर्म है प्रेम, दया, क्षमा। शास्त्रों ने उसे वीरों का गुण बताया है। ये वीरता शरीर की नहीं बल्कि हृदय की है। क्षीण काय व्यक्ति भी दूसरों की मदद से घोर हिंसा करते हुए देखे गए हैं, और युधिष्ठिर के समान शरीर से बलवान लोग भी राजा विराट जैसों को क्षमा प्रदान करते हुए देखे गए हैं। मतलब ये है कि जब तक हृदय का बल प्राप्त नहीं हुआ तब तक किसी ने अहिंसा धर्म का पालन नहीं किया ऐसा माना ही नहीं जा सकता। आजकल की वणिक हिंसा अहिंसा नहीं, इसमें तो प्राय घोर निर्दयता दिखाई देती है और अज्ञान तो इसमें है ही। मैं जानता हूं कि हम में यह दुर्बलता है, इसलिए मैंने खेड़ा में महायुद्ध के समय सिपाहियों की भर्ती करने का भारी प्रयत्न किया, और इसी से मैंने उस समय कहा था ब्रिटिश हुकूमत जो अनेक जघन्य कृत्य किए हुए हैं उनमें उनका एक सबसे जघन्य कृत्य ये है कि उसने यहाँ की जनता को निशस्त्र करके निर्वीर्य बना दिया। आज भी मेरा वही दृष्टिकोण है। जिस किसी के मन में भय हो वो यदि निशस्त्र रहकर अपने भय को दूर नहीं कर सकता तो वह अवश्य लाठी या उससे अधिक प्रभावकारी शस्त्र का अवलंबन करे। अहिंसा एक महाव्रत है। ये तलवार की धार पर चलने से भी अधिक कठिन है। देहधारी के लिए उसका 16 आने पालन करना असंभव ही माना जाएगा। उसके पालन के लिए तपश्चर्या की आवश्यकता है। तपश्चर्या का अर्थ है त्याग और ज्ञान। जिसे जमीन के स्वामित्व का मोह है वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। किसान के लिए अपनी जमीन की रक्षा किए बिना कोई चारा नहीं। उसे जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। जो किसान जानवरों अथवा चोर आदि को दंड देने के लिए तैयार न हो उसे हमेशा अपना खेत छोड़ देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए मनुष्य को शास्त्र तथा रीति रिवाज की मर्यादा का पालन करना चाहिए। शास्त्र हिंसा की आज्ञा नहीं देता, परंतु प्रसंग विशेष पर हिंसा विशेष को अनिवार्य मानकर वो उसकी छूट अवश्य देता है। जैसा कि कहते हैं मनुस्मृति में अमुक प्राणी के वध की अनुमति दी गई, यह वध करने की आज्ञा नहीं है। उसके बाद चिंतन में और प्रगति हुई तब यह तय हुआ कि कलिकाल में यह अपवाद न रहे।

इसलिए वर्तमान रिवाज अमुक हिंसा को क्षम्य मानता है और मनु स्मृति में जिन प्रसंगों पर हिंसा की अनुमति दी गई है उन्हीं से कई प्रसंगों पर हिंसा करने का प्रतिबंध है। कुछ छूट शास्त्रों ने दे रखी है, उससे आगे बढ़ने की दलील स्पष्टतः गलत है। संयम में धर्म है, स्वच्छता में अधर्म। जो मनुष्य शास्त्र की दी हुई छूट से लाभ नहीं उठाता वह धन्यवाद का पात्र है। संयम की कोई भी सीमा नहीं होती, इसलिए अहिंसा की भी कोई सीमा नहीं है। संयम का स्वागत दुनिया के तमाम शास्त्र करते आए हैं। स्वच्छंदता के विषय में शास्त्रों में भारी मतभेद है। समकोण सब जगह एक ही प्रकार का होता है, दूसरे कोण अगणित है। अहिंसा और सत्य समस्त धर्मों के समकोण है। जो आचार इस कसौटी पर खरा न उतरे वो त्याज्य है। दूसरे कोण अगणित है। अहिंसा और सत्य समस्त धर्मों के समकोण है। जो आचार इस कसौटी पर खरा न उतरे वो त्याज्य है, इसमें कोई भी शंका नहीं कर सकता। अधूरे आचार की इजाजत चाहे हो, किंतु अहिंसा धर्म पालन करने वालों को निरंतर जागरूक रहकर अपने हृदय बल को बढ़ाते हुए और प्राप्त छूटों के क्षेत्र को संकुचित करते ही जाना चाहिए। भोग में धर्म है ही नहीं, संसार का ज्ञान पूर्वक त्याग ही मोक्ष प्राप्ति है। संसार का पूर्ण त्याग हिमालय के शिखर पर चले जाने में से नहीं है। हृदय की गुफा सच्ची गुफा है, उसमें छिपकर और सुरक्षित रहकर मनुष्य संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहकर अनिवार्य प्रवृत्तियों में भाग लेते हुए विचरण कर सकता है। तो श्रोताओं, ये थे पूज्य बापू के अहिंसा की समस्या पर विचार, और आइए सुनते हैं एक भक्ति रचना।

गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे अहिंसा की समस्या विषय पर बापू के विचार। वाचक श्रोता प्रमोद कुमार शर्मा का, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार के, संयोजन था श्री अमित सिंह का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला नमो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात

0: दिग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
1: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
1: जी।
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
1: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
1: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
1: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
1: जी।
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
1: जी।
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
1: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
1: जी।
0: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
1: जी।
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
1: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
1: जी।
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुना

0: चीटी,
1: श्रम का राग सुना दे चीटी।
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चीटी,
1: दाना चुनकर लाती चीटी।
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
1: घर को खूब सजाती चींटी।
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे।
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नहीं कभी घबराती चींटी।
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी।
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंड लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्रामीण जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो हम है। गर्मी की इस तपिश में जल की एक एक बूंद अयोती है। जल की एक एक बूंद बचाइए, अपना भविष्य सुरक्षित करिए।

हरे भरे वृक्ष प्रकृति का श्रृंगार है। हरे भरे वृक्ष मानव जीवन का आधार है। अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे में एक पेड़ जरूर लगाएं। ये पेड़ हमारे भविष्य का, जीवन का आधार है। हम आकाशवाणी बीकानेर के बोल रहे हैं। सुकुंदर दशमलव 0.5 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 MHz पर। श्रोताओं, समय मिलाना चाहे तो स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। प्रोग्राम में पहले सुने चिन्मय श्रीपदा की आवाज में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का ये गीत, जिसको लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत विशाल शेखर का।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म बाजार का ये गीत। गीत को लिखा था शब्बीर अहमद ने और संगीत था कनिका कपूर का। कार्यक्रम नई फिल्मों से आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मरु चैनल से। निजी कार्यक्रम में आप सुनिए तुलसी कुमार और की आवाज में फिल्म एक्शन रिप्ले का ये गीत।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

kleine Lapsenie. रेशमी विरा का लिखा गीत जिसे संगीत दिया है जीत गांगुली ने, गीत को गाया है अरिजीत सिंह और फिल्म का नाम है राज रिबूट।

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। निजी कार्यक्रम में आप सुनिए अन्वेषा की आवाज में फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये गीत को लिखा इशाद कामिल ने और संगीत हिमेश रेशमिया का।

फिल्म के लिखे गीत को संगीत दिया तनिष्क बागची ने। गीत को गाए हैं तुलसी कुमार ने और फिल्म का नाम था बादशाह हूं। कार्यक्रम में आप सुनिए मोहित चौहान की आवाज में फिल्म बोल बच्चन का ये गीत। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: राजेश सिंह और तोशी कुमार की आवाजों में आपने सुना तुम बिन तू फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने, संगीत था अंकित तिवारी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर से। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज विषय रहेगा स्वास्थ्य सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
2: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद आपका।
2: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
3: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
2: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
3: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने

0: सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा, अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेकर बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी। चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को। जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल
0: के
1: लिए
0: चलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग

0: को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं?
1: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 देख जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
0: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है।
1: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। सीबीआई को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
0: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
1: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
0: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
1: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
0: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
1: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
0: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
1: हकीकत तो ये जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
0: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
1: देखो सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
0: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
1: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
0: सर लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी, कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचा। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
0: शिवराज जी आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात, पूछते हैं क्या लोग?
1: आप

0: तुलनात्मक दृष्टि से देखिए मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहां कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उनके लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहे। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूं और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कारपूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं।

0: कि अलनीनो के कारण यहां बारिश कम हो सकती है। हमने वो नए 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहां कम बारिश होने की संभावना है, और हमने टीआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन में ये तुष्टिकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टिकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या है?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूं, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूं। और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक, हम सबको भी एक सीख थी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: ২৬ मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से, जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनर्जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो ये

0: है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगो युगीन है, वो युगो युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, और इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगो युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए और उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगो युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज्यादा बेहतर है, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं, और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहां पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहां पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेन जी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें, अपने समय

0: में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे और वाइसराय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहां पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनः जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहां के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है और वहां पर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ एआर वीआर एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहां पर जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरिटाइम सिस्टम था, वेयर हाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे, और आज जब आप इस दौर में ही संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई है और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जो हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये एक शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं, जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूं कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
0: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया

0: जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारे दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है। तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज, उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
0: तो हम बात कर रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:35 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है सौदागर। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

अपने सुनील मित्र ने दिशकर की आवाज में फिल्म का नाम था सौदागर। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों के कार्यक्रम में कुछ बुरे बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारु चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम है डॉक्टर अनिल बख्शी

ग्राफी की आवाज में आदमी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। ये कोलकाता शकील बदायूं में संगीत था निशाद का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारो चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति मुकेश की आवाज में फिल्म का नाम है तीसरी कसम। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

राकेश की आवाज में तीसरी किस्म फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत था शंकर जय किशन का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिछड़े गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मोरो चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है आमने सामने। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को

0: रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाए आमने सामने फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये भूमि मेरे चैनल है। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 12 बजे ही प्रस्तुत है हिंदी में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री

0: संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। विद्युत 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में 12:10 पर और शाम 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। हमारी इसी सभा में 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, रात्रि 8:00 और

अपना कार्यक्रम महाजगत सुनेंगे दोपहर 1:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मेरू चैनल से। कार्यक्रम में यह चर्चा के विषय रहेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, कानूनी मदद एवं हेल्पलाइन, शिक्षा का अधिकार, खाने में संपूर्ण पोषण, 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, बच्चों और किशोरों में बढ़ता स्क्रीन टाइम और अभिभावकों की भूमिका पर डॉक्टर मंजू कुमार राठौड़ से श्री संदीप कुमार पारिक की बातचीत। प्रस्तुति होगी श्री वर्खा खंडी व्यास के संयोजन रहेगा श्री अमित सिंह का। कार्यक्रम में आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ ब्यूटी टिप्स।

साथ साथ ही अपना कार्यक्रम विवरण सुनेंगे। शाम 5:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोल नगर चैनल से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधी बीमारियों का प्रबंधन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु जानकारी, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, मशीन लर्निंग नवीन करणीय ऊर्जा, लेखन का अभ्यास करें जैसे विषयों पर। कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज। शाम 6:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोल नगर चैनल से प्रसारित होने वाले फिल्म संगीत में आप सुनेंगे एक ही फिल्म से कुछ गीत। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:40 आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।

एफएम ग्रामीण जीवन सुनेंगे शाम 7 बजे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे बरसात से पूर्व पशु टीकाकरण जरूरी, वन और वन्य जीवन संरक्षण, मेक इन इंडिया, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम पर जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी।

आकाशवाणी बीकानेर के ही ढोलमारू चैनल से रात 9:30 पर आप सुनेंगे स्थानीय नाटक जाहिदा और जानकी। लेखक होंगे श्री विनोद कृष्ण भट्ट।

उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां का समय रहेगा रात 10 बजे आकाशवाणी जयपुर केन्द्र से। रात्रि 10:30 पर आकाशवाणी बीकानेर के डेला मेरे चैनल से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे दादरा ठुमरी। कलाकार होंगे

0: यह था हमारे आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ गजलें। पहली गजल हम आपको सुना रहे हैं रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाजों में।
1: वालिद रोजो शब खुदा की याद में रहते थे। कभी मौज में आते तो फरमाते, बेटा इश्क करो, इश्क ही इस कारखाने में मुतसर्रफ है। अगर इश्क ना होता तो नज़्मे कुल कायम नहीं रह सकता था। बेइश्क जिंदगी बबाल है, इश्क में जी की बाजी लगा देना कमाल है। इश्क बनाता है, इश्क ही कुंदन कर देता है। दुनिया में जो कुछ है इश्क का जहूर है। इश्क की सोजिश है, पानी इश्क की रफ्तार है, खाक इश्क का करार है, हवा उसका इस्तरार है, मौत इश्क की मस्ती, जिंदगी इश्क की होशियारी है, रात इश्क का ख्वाब और दिन इश्क की बेदारी है, नेकी इश्क का कुर्ब है, गुनाह इश्क की दूरी है, जन्नत इश्क का शौक है, दोज़ख इश्क का शौक है। काम मकसद को इश्क बिन पहुंचा, आरजू इश्क मुतहा है, इश्क सारे आलम में भर रहा है इश्क।

आप सुन रहे हैं सुबह संवाद के कार्यक्रम में कुछ गजलें आकाशवाणी बीकानेर के ध्वनिमय चैनल से। कार्यक्रम की अगली गजल हम आपको सुना रहे हैं पंकज उदास की आवाज में।

जिज्ञा सिंह की आवाज में ये गजल भी आपने सुनी। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कुछ गजलें आकाशवाणी बीकानेर के ढोलो मारो चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली गजल मिताली और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में।

आप सुन रहे हैं सुबह संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के 12 चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगली गजल। जगजीत सिंह की आवाज में

सिंह की आवाज में गाए इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.5 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 12:40 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत लीजिए सुनिए विशाल मिश्रा की आवाज में। फिल्म का नाम है हक। गीत को लिखा है कुशाल किशोर ने, संगीत है विशाल मिश्रा का।

विशाल मिश्रा की आवाज में हक फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कौशल किशोर किल के गीत को संगीतबद्ध किया था विशाल मिश्रा ने। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मेरे चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म का नाम है तमाशा। गीत को लिखा है इरशाद करने वाले।

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में आपने सुना तमाशा फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत था ए आर रहमान का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के धुरी मेरू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, बैनी दयाल, दिव्य कुमार और बिनाका गुम्स की आवाजों में। फिल्म का नाम है तीन। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है क्लिंटन सैरेजो का।

0: आतिफ असलम की आवाज में ट्यूबलाइट फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत था प्रीतम का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को हुए कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास एजेंडा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और देश लगातार प्रगति कर रहा है। श्री अठावले ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी बढ़ी है और मेक इन इंडिया अभियान ने तेज गति पकड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय भी समाज कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। जनगणना 2027 पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग की जानकारी मिलेगी, जिससे केंद्र सरकार को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में और मदद होगी।
2: माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। अब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है भी जानकारी मिलेगी, और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का SC ST को OBC को फायदा मिला है, और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
1: केंद्र सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश एक अस्थायी उपाय है, जिससे इस संकट के समय में जमाखोरी को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से विशेष प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। 12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के विषय पर आधारित इन प्रदर्शनियों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया जा रहा है। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जिला सूचना केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बाड़मेर में ये प्रदर्शनी भगवान महावीर टाउन हॉल में और 12 के जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में लगाई गई है। आमजन के अवलोकन के लिए ये प्रदर्शनी 14 जून तक खुली रहेगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के अनुसार राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप से भारतीय दल की वापसी के दौरान बीमार पड़ने के बाद राणा का हाल ही में चिकित्सा उपचार किया गया था। उन्होंने नई दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और

0: उन्हें स्टंट डाला गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में सक्रिय एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके असर से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बरसात हुई, जिससे श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 52 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अब भी जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज प्रस्तुत करता है मधु शर्मा और माधवी व्यास।

0: स्वागत है हमारी सखियों का। आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम महिला जगत। मैं हूं माधवी व्यास और मेरे साथ है मेरी ही सखी
1: मधु शर्मा।
0: आप सभी को हमारा स्नेह भरा
1: नमस्कार। सखी, जून की तपती दोपहर में जब प्यास लगने पर हम पानी को ढूंढते हैं, है ना, लेकिन तब जरा उन नए पक्षियों के बारे में भी सोचिए जो खुले आसमान में उड़ते हुए पानी की एक एक बूंद तलाशते हैं। हमारी छत आंगन में खिड़की पर रखा एक छोटा सा परिंदा और थोड़ी सी दाने किसी बेजुबान जीव के लिए जीवन का सहारा बन सकते हैं।
0: तो आइए इस घर में हम भी एक छोटा सा संकल्प लें, अपने घर के बाहर पानी और दाने की व्यवस्था करें ताकि चिड़ियों की चहचहाट यही हमारे आंगन और जीवन में मिठास घोलती रहे। क्योंकि प्रकृति की रक्षा का सबसे सुंदर तरीका है उनके नन्हे जीवों को देखभाल करते रहना।
1: बिल्कुल सही कहा मैं। तो इसी सुंदर संदेश के साथ बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम महिला जगत की ओर और बने रहिए हमारे साथ। एक कटोरी पानी मुट्ठी भर लेना बना सकते हैं किसी जीव का ठिकाना।
0: अब बढ़ते हैं संगीत की उस दुनिया की ओर जहाँ सुरों में संवेदनाएं बसती हैं। चलिए गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मौजूद है।
1: बिल्कुल, यदि आपको कहीं बाल श्रम दिखाई दे या फिर किसी बच्चे की सहायता की आपको आवश्यकता है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है।
0: बिल्कुल, इसके अलावा आप स्थानीय प्रशासन, पुलिस या बाल कल्याण समिति तक भी जानकारी पहुंचा सकते हैं। आपकी एक सूचना किसी बच्चे को शोषण से मुक्त करा सकती है, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की राह दिखा सकती है ना?
1: बिल्कुल मैडम, याद रखिए बहनों कि बच्चों को केवल सहानुभूति नहीं उनके अधिकार भी चाहिए, और जब समाज जागरूक होता है तभी बचपन सुरक्षित हो सकता है।
0: हर बच्चे की आंखों में उजाले का एक संसार हो, हर बच्चे की आंखों में उजाले का एक संसार हो, उसके सपनों पर न मजबूरी का कोई भार हो, इसी उम्मीद और संदेश के साथ अब समय है गीत संगीत का। आइए सुनते हैं एक ऐसा मधुर गीत जो जीवन में उम्मीद, मुस्कान और नए सपनों के रंग भर देगा।
1: बिल्कुल।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: सखियों, हर बच्चे की आंखों में सपने होते हैं और उन सपनों को उड़ान देने का सबसे मजबूत माध्यम है शिक्षा। शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की नींव है, है ना?
2: बिल्कुल माधवी, शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है।
1: और जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो केवल पढ़ना लिखना नहीं सीखता बल्कि आत्मविश्वास जागरूक और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति भी प्राप्त करता है।
2: बिल्कुल, तो सखियों कोशिश करें कि अपने आसपास किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दें, क्योंकि शिक्षित बच्चा ही सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का आधार बनता है। लेकिन माधवी, आजकल के जो बच्चे हैं वो किताबों से पढ़ने के बजाय मोबाइल या कंप्यूटर से पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? यानी कि अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पर बिताना पसंद करते हैं। और आजकल आज डिजिटल आजकल युग जो है

0: जरूरी है लेकिन इसके बहुत दुष्प्रभाव हैं। और आज के डिजिटल युग में बच्चों और किशोरों का बढ़ता स्क्रीन टाइम एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। ऐसे में अभिभावकों की भूमिका और जिम्मेदारी पहले से और कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू कंवर राठौर, जिनसे बात करेंगे हमारे साथी श्री संदीप कुमार पारेख जी। आइए सुनते हैं यह उपयोगी विचारोत्तेजक भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता के संयोजक हैं श्री अमित सिंह, प्रस्तुति है श्रीमती बरखा तारिणी व्यास की।
1: आजकल हम देखते हैं कि हर घर में एक आम समस्या के रूप में जो चीज हमारे सामने देखने को मिलती है वो ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना अधिकतर समय जो है वो मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप पर व्यतीत करना पसंद करते हैं। एक तरह से ये उनके मनोरंजन का साधन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर गहराई से बात करें और विचारें तो ये उनके आने वाले भविष्य को चौपट कर देने वाला कार्य भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक बार जब इसकी लत लग जाती है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन युवावस्था का वो समय है जब वो अपने भविष्य को, अपने करियर को बना भी सकते हैं और मटियामेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल के साथ समय व्यतीत करना, लैपटॉप पर या कभी कभी टेलीविजन पर समय व्यतीत करना, ये आज के बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इसके क्या क्या आगामी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मंजू कंवर राठौर जी को। आप सहायक आचार्य हैं मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन विभाग सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जो समस्या अभी जिसका हमने जिक्र किया उसके संदर्भ में आप हमें ये बताइए कि आजकल हम देखते हैं कि क्या बड़े और क्या छोटे, हर उम्र के लोग जो हैं वो अपना अधिकतर समय स्क्रीन पर बिताना पसंद करते हैं। तो अगर हम समस्या के जड़ की तरफ जाते हुए अगर बात करें तो शुरुआती उम्र के बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है?
2: जी, आज हम सबको पता है कि ये जो स्क्रीन है आमतौर पर हर घर में ये माध्यम अवेलेबल है और इसकी शुरुआत इस प्रकार से होती है, कभी ये हमारी जरूरत था, जो टीवी, टैबलेट, कंप्यूटर या मोबाइल कहें, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से एक्सेस करना बहुत आसान हो गया और हर घर में एक नॉर्मल सी रेट पे इसका उपलब्ध होना, जिसको हम पढ़ाई, मनोरंजन और बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज छोटे बच्चों को भी देखें कि वो स्क्रीन टाइम अधिकतर इस्तेमाल करने लगे तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को लगता है कि जो गुणवत्तापूर्वक टाइम उनको अपने बच्चों को देना होगा उससे हम उसी वक्त में अगर हम किसी दूसरे काम को कर रहे हैं तो स्क्रीन अवेलेबल करवा दें, जिससे बच्चा थोड़ी देर स्क्रीन इस्तेमाल करेगा और हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन जो हम सबको माननी भी होगी, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, कि जन्म से 6 वर्ष तक का समय इतना अधिक उपयोगी होता है, जहां मस्तिष्क का बहुत तेजी से विकास हो रहा होता है, ऐसे बच्चों का स्क्रीन पे अधिक समय व्यतीत करने से उनकी भाषा विकास में देरी हो सकती है, वो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करेंगे, उनको नींद की समस्या होगी, चिड़चिड़ापन आएगा और वो बच्चा अकेला रहना पसंद करेगा। जो चीज़ सोशलाइजेशन सिखाती है, सामाजिकीकरण सिखाता है, उन सबसे वो बच्चा दूर होगा।
1: जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। ये जो समस्या है इसके बारे में जब हम और बातचीत करते हैं तो कई बार, जैसा आपने भी अभी बताया कि माताएं जो होती हैं वो अपना घर का कामकाज निपटाने की गरज से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मोबाइल थमा देती हैं या टीवी पे कार्टून वगैरह जो है वो लगा देती हैं। तो एक चीज आप हमें ये बताइए कि ये जो कार्टून बच्चों को दिखाना या मोबाइल बच्चों को देना शांत रखने में, क्या ये वास्तव में बच्चों को शांत करते हैं? क्योंकि माँ बाप को ऐसा लगता है कि ऐसा कर देने से शायद वो सही कर रहे हैं।
2: जी, आपने ठीक कहा, ये सिर्फ आभास मात्र है, हमें ऐसा लगता है कि बच्चा शांत हो गया है, जैसा हम खाना खिलाना चाहते हैं वो खा लेगा या अगर हम दूसरा काम कर रहे हैं तो हमें करने देगा, लेकिन ये आंशिक समय के लिए ये समाधान ठीक लगता है। लंबे समय में अगर आपने इस बात पे विश्वास करके बच्चों को स्क्रीन देना जारी रखा तो वो उनकी लत बन सकती

0: सकती है और बच्चा अधिकाधिक स्क्रीन पर निर्भर करने लगेगा, ना वो मोबाइल के बिना खाना खाएगा, जल्दी बोर हो जाएगा। भावनात्मक तौर पर जिन गतिविधियों में वो बहुत मन से अपना इन्वॉल्वमेंट देता है, वो इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करने लगेगा।
1: और दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि अनजाने में हम उनको एक इस तरह की लत की ओर बढ़ावा दे रहे हैं जो भविष्य में उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो अगर अपना अधिकतर समय स्क्रीन पर व्यतीत करते हैं तो उनमें क्या क्या बदलाव हैं जो दिखाई देते हैं और जिनके प्रति माता पिता को सजग हो जाना चाहिए?
0: जी, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी ये मानते हैं, समझते हैं कि बच्चों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनके दोस्तों का होता है। वो चाहे पढ़ाई में रुचि हो, अपना करियर बनाना हो या खेल कूद जैसी गतिविधियों में उनकी रुचि लेना हो, वो अपने दोस्तों को देख के आता है और बाहर घर में उनके साथ समय व्यतीत करने से होता है। लेकिन अधिक स्क्रीन टाइम बिताने से स्कूल जाने वाले बच्चों का भी बाहर खेलना कम हो जाता है, उनकी शारीरिक गतिविधि घटती है, मोटापा बढ़ सकता है, पढ़ाई में ध्यान तो वो बहुत ही कम देने लगते हैं। इसके अलावा उनमें धैर्य एकाग्रता की कमी आती है और जो स्क्रीन पे उनको दिखाई देता है या वो एकांत में जैसा कुछ गतिविधियां नोट करते हैं स्क्रीन में क्या दिखाया जा रहा है, उनसे उनके व्यवहार में सीधे से बदलाव आता है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तो उनमें धीरज जो है, संयम जो है, वो खत्म होने लगता है। एक सवाल मेरे मन में और भी आ रहा है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो किशोर हैं या युवावस्था में जो बच्चे हैं वो जब स्क्रीन की तरफ मुड़ते हैं तो कोई ना कोई वजह जरूर होती होगी, तो खास तौर से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो सबसे बड़ी चिंता क्या है?
0: चिंता ये रहेगी, किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं अभी ऐसा दौर है उनके जीवन का जब वो अपनी पहचान बना रहे होते हैं, खुद को समझ रहे होते हैं अपने दोस्तों की नज़र से, अपने टीचर्स की नज़र से, अभिभावकों की नज़र से। कहीं न कहीं अगर उनकी रुचि स्क्रीन में बढ़ती है तो उनका एकांत में रहना बढ़ जाता है, वो किसी से मेलजोल नहीं रखते, बातचीत नहीं करते और ये जो वर्चुअल आभासी दुनिया है उसी का अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आत्मविश्वास बनना होता है वो नहीं बन पाता। उनमें चिंता तनाव बढ़ सकता है क्योंकि उनको रियल रूप में वास्तविक तौर पर कोई साथी नहीं मिल पाता और वो ये आभासी दुनिया में ये समझ भी नहीं पाते कि वहाँ जो उनकी समस्या को सुन रहा है वो वास्तविक नहीं है, ना ही वो परमानेंट समाधान या गाइडेंस दे सकता है। मन की बात को किसी को कह नहीं पाते या किसी में विश्वास नहीं जता पाते कि मैं ये बात किसको कहूं या कहां से मुझे इसका समाधान मिल सकता है। अब उनको जब तक ये समझ आता है कि ये आभासी दुनिया स्क्रीन के माध्यम से जो उनको अवेलेबल है, यहाँ उनको समाधान नहीं मिलेगा, वो उनकी संवेदनशीलता को कम करता है और उनके आत्मविश्वास को भी बहुत कम करता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक जमाना पहले था जब बच्चों के बहुत सारे साथी हुआ करते थे और हर गांव में या शहर में भी बच्चे जो हैं वो अपना समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते थे, भांति भांति प्रकार के खेल कूद जो है वो हुआ करते थे, उनमें वो शामिल होते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि परिवार जो है वो एकाकी हो गए हैं और बच्चों में एक खालीपन जो है वो उभरने लगता है और उसको भरने के लिए शायद वो सोशल मीडिया जो है उस पर तलाशने की कोशिश करते हैं। तो सवाल अब ये है, अगर हम मैं बच्चों के माध्यम से पूछना चाहूँ तो आजकल के समय में जब बच्चों के साथ कोई समय व्यतीत करने वाला साथी ना हो तो क्या ये जो सोशल मीडिया है ये पूरी तरह से नुकसानदायक है?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पूरी तरह से नुकसानदायक नहीं है, जो भी तकनीक सोशल मीडिया है दोनों के सकारात्मक पहलू भी हैं अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए। इस मीडिया से बच्चों को सीखने में मदद मिलती है, जैसा हम सब देखते हैं जहां बच्चा एक स्कूल में जाता है, अपनी कक्षा में कक्षा के अध्यापक से एक टॉपिक को एक तरह से सीखता है, सुनता है, लेकिन स्क्रीन में जहां मीडिया पे उसको सेम टॉपिक को बहुत से भांति भांति के तरीके से समझाया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो देख सकता है और अपने पढ़ाई में और अधिक रुचि बढ़ा सकता है। साथ में रचनात्मकता, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं उनको भी बहुत जानकारी मिलती है और बातचीत करने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनका बातचीत करना आसान हो जाता है।

0: सकता है। समस्या उपयोग करना नहीं है, अधिक और अनियंत्रित, जहां बच्चों को समझ ना हो और अभिभावक ध्यान ना दे कि वो बच्चा कितनी देर स्क्रीन का इस्तेमाल करना है, ये चीज ज्यादा समस्या का रूप लेती है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया जो है वो रचनात्मकता को भी बढ़ा देता है अगर हम सही ढंग से उसका उपयोग करें। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि बाल मन जो होता है वो बहुत कोमल होता है
0: जी।
1: और ऐसा अक्सर होता है कि जो चीज़ बुरी है या गलत है उसकी तरफ बच्चों का मन ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप जो हैं उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
0: जी, हम सब जानते हैं बच्चे सबसे अधिक माता पिता के करीब ही रहते हैं, घर में भी उनको वही देखते भी हैं और अधिक समय भी वो घर में बिताते हैं। अगर माता पिता मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, सबसे पहले तो छोटे बच्चे वहीं से ऑब्जर्व करते हैं कि मम्मी पापा अगर हमारे मोबाइल को देख रहे हैं तो इसको देखने में कोई बुराई नहीं है। रही बात किशोरों की, उनको भी जब बच्चों के व्यवहार में माता पिता को कुछ बदलाव नजर आए तो माता पिता को समझना चाहिए कि स्क्रीन पर वो क्या देख रहे हैं। प्रैक्टिकल तौर पर माता पिता घर में स्क्रीन फ्री टाइम तय करें, जिस प्रकार हम रूटीन में आपस में घर में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची बात करें। खाने के समय मोबाइल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर सोना है, सोने के समय से एक घंटे पहले तो स्क्रीन को पूरी तरह से बंद रखें। इन सब बातों पे गौर फरमाने से पहले हम सब बड़ों को ये समझना होगा, जो हम व्यवहार करेंगे स्क्रीन को लेके, मोबाइल को लेके, उसी को बच्चे रिपीट करेंगे। सो सबसे पहले हम खुद में संयम लाएं स्क्रीन टाइम उपयोग को लेकर। बच्चों के कमरे में टीवी या मोबाइल ना रखें। आउटडोर खेल, परिवार के साथ समय बढ़ाएं। बच्चों से बातचीत करें। सिर्फ निगरानी रखने से, नियंत्रण कंट्रोल से कुछ नहीं होगा। उनसे बातचीत करें और उनसे समझें कि वो स्क्रीन पे समय बिताना क्यों आवश्यक समझते हैं, और आप अपने नजरिए से समझाएं कि किस तरह से आप सदुपयोग कर सकते हैं। बच्चे क्या देख रहे हैं, उससे उनकी किस तरह की गतिविधियों में रुचि बढ़ रही है, माता पिता इसको बेहतर समझते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चे क्या है कि देखकर सीखते हैं और इसमें माता पिता का वो अनुकरण जो है वो सबसे पहले करते हैं। यदि माता पिता स्वयं पर कंट्रोल करेंगे तो घर में भी ऐसा माहौल जो है वो बनाया जा सकता है कि जिसके अंतर्गत बच्चे जो हैं वो स्वयं अनुशासित हों और अपना स्क्रीन टाइम जो है वो नियंत्रित रखें। अब एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा कि आज के समय में क्या बच्चों को पूरी तरह से मोबाइल से दूर रखना संभव है?
0: जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी जितनी जरूरत है उतनी उपलब्धता बच्चों को देना ये सबसे अधिक आवश्यक है। तकनीक से दूर भगाना बिल्कुल नहीं हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन उनको संतुलित उपयोग करना सिखाना होगा। उनको डिजिटल साक्षरता देनी होगी, जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और वो ये प्रायोरिटाइज कर सकें कि हमारे लिए खेल, परिवार, दोस्त, किताबें और वास्तविक जीवन के अनुभव सबसे अधिक आवश्यक है।
1: जी, तो बच्चों और किशोरों में बढ़ता स्क्रीन टाइम और अभिभावकों की भूमिका, इस विषय पर आज जानकारी दे रही थी स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की डॉक्टर मंजू कंवर राठौड़ जी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में पधारी और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सखियों, ये थी डॉक्टर मंजू कंवर राठौड़ जी से श्री संदीप कुमार पारिक जी की विशेष बातचीत, जिसमें बच्चे और किशोरों में बढ़ते स्क्रीन टाइम तथा अभिभावकों की भूमिका पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। आशा है कि इस चर्चा से आपको अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और संतुलित जीवन शैली के लिए उपयोगी सुझाव मिले होंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास जी की और संयोजन थे श्री अमित सिंह जी।
3: मानो हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले जो उसे न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ाए बल्कि अच्छे संस्कार और आत्मविश्वास भी दे। इसी उद्देश्य को साकार करने का प्रयास कर रहा है श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान

किया जाता है। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का ज्ञान भी दिया जाता है, ताकि वे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बन सके। यदि आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छे शैक्षणिक वातावरण की तलाश में हैं, तो कृष्णा पब्लिक स्कूल आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

0: कहते हैं ना कि हमारे दिल तक पहुंचने का रास्ता रसोई से होकर जाता है।
1: बिल्कुल,
0: रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि वो स्थान है जहां पूरे परिवार की सेहत, ऊर्जा और खुशियों की नींव रखी जाती है ना।
1: बिल्कुल माधवी, हम अपने परिवार के लिए बड़े प्यार से भोजन बनाते हैं, लेकिन

0: केवल पेट भरने ही काफी नहीं है, यह भी जरूरी है कि हमारे भोजन में शरीर के लिए सभी पोषक तत्व मौजूद हो। हम हमारे परिवार के लिए ऐसा भोजन बनाते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो।
1: बिल्कुल सही कहा मधु। स्वादिष्ट भोजन हमें खुशी देता है, लेकिन पौष्टिक भोजन हमें स्वस्थ जीवन देता है। और जब परिवार स्वस्थ रहता है तो घर में खुशियां भी बनी रहती है। जब वह
0: खाना
1: स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है और परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में उत्साह अपने आप ही दिखने लग जाता है।
0: लेकिन माधवी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे तो भागते हैं, पर पोषण तो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, है ना। कभी बच्चों की पसंद, कभी समय की कमी, कभी बदलते जीवन शैली के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हमारे खाने में शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व मौजूद है या नहीं, है ना।
1: बिल्कुल सही कहा मधु। सखियों, आखिर स्वस्थ शरीर ही तो हमारे सपनों, हमारी जिम्मेदारियां और हमारी खुशियों का आधार है। एक माँ जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है ना, तो उसमें सिर्फ मसाले और सामग्री ही नहीं होती, बल्कि प्यार, ममता और उनकी सेहत की चिंता भी शामिल ही होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा माधवी। संपूर्ण पोषण का मतलब ऐसा भोजन जिसमें हमें पोषक तत्व पूरा पोषण लेने के लिए पोषक भोजन करना चाहिए, यानी पूरे पोषक तत्व जिसमें जिस खाने में मौजूद हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और सबसे जरूरी चीज पर्याप्त पानी, है ना। और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं और रोटी, चावल, बाजरा, ज्वार इसके अच्छे स्रोत हैं।
1: और वहीं प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। दालें, दही, दूध, पनीर, सोयाबीन और चना प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। साथ ही बहनों, फल और हरी सब्जियां भी बहुत जरूरी हैं। इनमें विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा भी देते हैं।
0: और मैं भी, हम महिलाओं के लिए तो सही पोषण बहुत जरूरी होता है ना। हम महिलाएं अक्सर पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी सेहत को ही नजरअंदाज कर देती हैं। यदि हम महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएंगी, है ना। इसलिए हमें अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दालें, जैसा कि तुमने अभी बताया, दूध वगैरह, ये सभी को शामिल करना चाहिए।
1: बिल्कुल बहनों, स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमारी थाली से होती है। यदि भोजन में संपूर्ण पोषण होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और परिवार खुशहाल रहेगा। तो आइए बहनों, आज से हम संकल्प लेते हैं कि स्वाद के साथ साथ पोषण को भी अपनी थाली में उचित स्थान देंगे। और इसी के साथ समय हो चला है गीत संगीत की दुनिया में, तो सखियों को ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सखियों, अभी हमने बात की थी स्वास्थ्य की, संपूर्ण पोषण की, साथ ही साथ स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जब स्वास्थ्य साथ न दे तो सबसे बड़ी खुशियां भी फीकी लगने लगती है ना मधु?
3: बिल्कुल मीनू, जीवन की अगर कोई सबसे बड़ी पूंजी है तो वह हमारा अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं तभी अपने पूरे परिवार की खुशियों में शामिल हो पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और जीवन को खोलकर जी पाते हैं। लेकिन मानो एक समय ऐसा भी था कि जब छोटी सी बीमारी के इलाज के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था।
2: बिल्कुल, गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टर तक पहुंचना भी आसान नहीं था। कई परिवार ऐसे थे जो इलाज की चिंता में रात भर जागते थे। एक माँ अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल की कतारों में खड़ी रहती थी, तो कहीं बुजुर्ग समय पर इलाज नहीं मिलने की चिंता में रह जाते थे, है ना?
3: और मानो खुशी की बात यह है कि पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाया गया है और नई तकनीकों का उपयोग भी बढ़ा है।
2: सही कहा मधु, आज कई सरकारी अस्पतालों में पहले की तुलना में बेहद सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। जांच, उपचार

0: और दवाइयों की सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में भी काम हुआ है। इसके अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, सुरक्षित प्रसव और बच्चों की टीकाकरण जैसी सेवाओं का विस्तार भी हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा माधवी तुमने, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। लोग अब नियमित जांच, स्वच्छता, पोषण और टीकाकरण के महत्व को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं। और इसके अलावा आज डिजिटल युग का उपयोग भी स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ा है। जहां जगह हर जगह ऑनलाइन परामर्श, डिजिटल स्वास्थ्य और रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। तो मैंने यह कहना गलत नहीं हुआ कि स्वास्थ्य सेवाओं में हुए इन सुधारों ने लोगों के जीवन को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास केवल अस्पतालों और दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ विकास केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की कहानी है जिनमें समय पर उपचार, सुरक्षा और एक नई उम्मीद मिलती है। तो आइए बहनों, एक हम भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, नियमित जांच करवाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं।
1: क्योंकि बहनों, जब समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी हमारा देश और अधिक मजबूत और प्रगतिशील बनेगा।
0: सखियों, इस भीषण गर्मी में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, भरपूर पानी पिए, मौसमी फल, ताजा भोजन का सेवन, ताकि शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे।
1: और हमारी गृहिणी बहनों के लिए एक छोटी सी रसोई टिप कि भोजन बनाते समय रसोई में स्थापित हवा और पानी की व्यवस्था पर्याप्त रखें और तथा बचे हुए भोजन को सही तरीके से ढक कर रखें, जिससे परिवार की सेहत सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल सही, घर को संवारने वाली, परिवार की मुस्कान को संभालने वाली हर महिला को हमारा सलाम। आपके अथक परिश्रम और समर्पण से ही घर घर बनता है ना।
1: और इन्हीं भावनाओं के साथ सुनिए कुछ पंक्तियाँ। धूप में तपकर भी जो छांव बन जाती है, हर थाली में प्रेम का स्वाद सजाती है, अपने सपनों को अक्सर पीछे रख देती है, वो तो नारी ही तो है जो पूरे घर को मुस्कुराहट देती है।
0: बहुत खूब मधु, इन्हीं स्नेह और सम्मान के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मैं माधवी व्यास
1: और मैं मधु शर्मा,
0: नमस्कार।

0: क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली

0: कर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और

0: संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
1: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में। फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली उजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और साउंड पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है आजा नचले।

कुमार सानू और संजीवनी की आवाजों में गरीब फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था राहत इंदौरी ने, संगीत था अनु मलिक का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे। गीत को लिखा है कुणाल वर्मा ने, संगीत है अमाल मलिक का।

दे प्यार दे फिल्म का गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत को लिखा था कुणाल वर्मा ने, संगीत था अमाल मलिक का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अरिजीत सिंह की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है सनम रे। गीत को लिखा है मिथुन ने, संगीत है मिथुन का।

अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाजों में आपने सुना सनम रे फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत था मिथुन का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत अरिजीत सिंह की ही आवाज में। फिल्म का नाम है लापता लेडीज। गीत को लिखा है प्रशांत पांडे ने, संगीत है राम संपत का।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाये लापता लेडीज फिल्म के स्किट के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हमारी पहली सभा अब यही समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलो हर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5 बजने को है। आज की हमारी दूसरी सभा प्रारंभ होती है। सभा के प्रारंभ में हमारे श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस

0: सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मधु चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ज और FM 101.6 मेगाहर्ज पर। संध्या के 5:05 हुए हैं और ये समय है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का, और आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आनंद कुमार पुरोहित और भवानी छंगाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपका दोस्त आनंद।
1: और मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त भवानी। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हर उम्र के लोगों से जुड़ा है, लेकिन युवाओं से शायद सबसे ज्यादा जुड़ा है।
0: बिल्कुल, और अपनी बातचीत हम शुरू करें उससे पहले एक सवाल। भवानी, आजकल सबसे तेज कौन दौड़ रहा है?
1: अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? खिलाड़ी, एथलीट और धावक?
0: नहीं जी, आजकल सबसे तेज दौड़ रहा है इंसान का शेड्यूल, सुबह से लेकर रात तक बस भागम भाग भागम भाग, यही ना?
1: सही कहा। सुबह मोबाइल, फिर कॉलेज या ऑफिस, फिर सोशल मीडिया, फिर देर रात तक स्क्रीन, और फिर शिकायत कि नींद ही नहीं आती, सिर दर्द रहता है, तनाव रहता है,
0: और फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब, बीमारी तो आपने खुद ही बुला ली है।
1: बिल्कुल सही। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन शैली संबंधित बीमारियों की, और यह भी जानेंगे कि योग किस प्रकार इन बीमारियों के प्रबंधन में हमारी मदद कर सकता है।
0: लेकिन डरिए मत दोस्तों, आज की ये चर्चा किसी मेडिकल क्लास की तरह नहीं होने वाली है। हम बात करेंगे अपने अंदाज में, बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह,
1: क्योंकि युवाणी में ज्ञान नहीं, मुस्कान के साथ साथ एकदम अच्छे से बात की जाती है।
0: तो चलिए बात करें कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जीवन शैली संबंधी बीमारियां होती क्या है।
1: दोस्तों, जीवन शैली संबंधित बीमारियों में भी बीमारियां हैं जो हमारी गलत दिनचर्या, असंतुलित खान पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी, तनाव और नींद की खराब आदतों के कारण पैदा होती है।
0: जैसे मोटापा, मधुमेह यानी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, तनाव, अवसाद, अनिद्रा और कई अन्य समस्याएं भी इसमें शामिल है।
1: बिल्कुल, पहले लोग सोचते थे आनंद कि ये बीमारियां केवल बुजुर्गों को होती हैं, लेकिन अब तो कॉलेज के छात्र भी तनाव, मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
0: बिल्कुल, तुमने बहुत सही बात कही। आजकल जो है, पहले लोग ये सोचते थे ये बीमारियां जो है इस तरीके से चलती है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारी बैठ कर रहने वाली जीवन शैली।
1: बिल्कुल, पहले लोग पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, अब अंगूठे की एक्सरसाइज सबसे पहले अभी सबसे ज्यादा हो रही है।
0: मतलब
1: मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए एक्सरसाइज ही तो है ये।
0: सही, बिल्कुल सही बात कही तुमने ये।
1: दोस्तों, तकनीकी बुरी नहीं है, लेकिन उसका असंतुलित उपयोग निश्चित रूप से

0: हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
1: ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो शरीर और मन दोनों को संतुलित कर सके,
0: और इसका उत्तर है योग।
1: जी हाँ दोस्तों, योग केवल व्यायाम नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है।
0: योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात शरीर मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करता है।
1: और अक्सर लोग योग को केवल आसनों तक ही सीमित समझ लेते हैं।
0: बिल्कुल, जबकि योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान और अनुशासन जीवन शैली भी सम्मिलित है।
1: दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन कुछ समय योग को देते हैं तो यह आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है।
0: चलिए सबसे पहले बात करते हैं तनाव की।
1: आज सबसे बड़ी समस्या तनाव ही है।
0: बिल्कुल, परीक्षा का तनाव, नौकरी का तनाव, रिश्तों का तनाव या भविष्य की चिंता,
1: और ऊपर से सोशल मीडिया, किसी की विदेश यात्रा देखकर लगता है कि हमारी जिंदगी तो यार बेकार ही जा रहा है।
0: बिल्कुल, अरे भाई वो विदेश में घूम रहा है, आप उसकी फोटो देखकर दुखी क्यों हो रहे हैं?
1: और हो सकता है कि वो खुद भी अगली फोटो के लिए परेशान हो रहा हो।
0: योग तनाव को कम करने का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है।
1: विशेष रूप से ध्यान और प्राणायाम मन को शांत करने में मदद करते हैं।
0: जब हम गहरी सांस लेते हैं और नियंत्रण सांस लेते हैं ना दोस्तों, तो शरीर में तनाव उत्पन्न रहने वाले हार्मोन्स का प्रभाव कम हो जाता है।
1: हाँ, तो कीजिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ध्यान जैसी विधियां मानसिक शांति प्रदान कर सकती है।
0: बिल्कुल, कई लोग का अनुभव है कि नियमित योग से उनकी एकाग्रता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। योग शरीर को सक्रिय बनाता है। सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, भुजंगासन और उनके आसन शरीर की मांसपेशियों को भी एक्टिव करते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और इसके साथ ही यदि संतुलित आहार भी लिया जाए तो वजन नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है।
0: बिल्कुल, योग का एक बड़ा लाभ ये भी है आनंद, कि ये शरीर को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से भी संतुलित करता है।
1: अरे वाह, और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है यानी डायबिटीज।
0: बिल्कुल, आज भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है,
1: और ये चिंताजनक बात है कि युवाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, नियमित योग शरीर की चयापचय प्रक्रिया जो होती है वो बेहतर बनाने में सहायक होती है।
1: हाँ, कुछ योगासन और प्राणायाम रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में सहयोगी हो सकते हैं।
0: लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी है।
1: कैसे?
0: यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो उसे डॉक्टर की सलाह के साथ साथ योग भी अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। योग चिकित्सा का विकल्प नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण सहयोगी साधन है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: योग और ध्यान बेहतर नींद के लिए अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं आनंद।
1: यदि सोने से पहले कुछ मिनट गहरी श्वास और ध्यान किया जाए तो दोस्तों मन शांत होता है, और अच्छी नींद अपने आप में कई बीमारियों की दवा है।
0: तो दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या योग केवल बीमार जो लोग होते हैं उनके लिए होता है?
1: बिल्कुल नहीं, योग स्वस्थ लोगों के लिए को भी स्वस्थ बनाए रखने का माध्यम है। यानी जब तक वो स्वस्थ रहेंगे, हाँ, तभी वो अच्छे से योग कर पाएंगे।
0: यानी बीमारी आने का इंतजार मत कीजिए,
1: पहले से ही अपने स्वास्थ्य में निवेश कीजिए।
0: वैसे आनंद, तुम योग करते हो?
1: हाँ करता हूँ, रोज।
0: मन में तो रोज करते हो, है ना?
1: हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है इस बात को लेकर?
0: मतलब सुबह अलार्म बजता है, मैं सोचता हूँ कि आज योग जरूर करूंगा। हाँ। लेकिन फिर नींद आ जाती है, शायद ऐसा ही होता होगा तुम्हारे हाँ, साथ
1: ऐसा ही कुछ। लेकिन सच यही है कि शुरुआत सबसे कठिन होती है।
0: बिल्कुल, यदि आप प्रतिदिन केवल 10 मिनट भी योग की शुरुआत करेंगे ना, तो दोस्तों धीरे धीरे आपकी वो आदत बन जाएगी।
1: जी हाँ, योग में निरंतरता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों।
0: बिल्कुल, और एक बात और आनंद, योग का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती, बस थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा समय और सीखने की इच्छा।
1: हाँ दोस्तों, यदि हम अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट योग से करें तो पूरे दिन ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस कर सकते हैं।
0: इसलिए आज दोस्त हम संकल्प लेते हैं कि अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय आप अपने लिए भी निकालें,
1: क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, और स्वास्थ्य जीवन से बड़ी सफलता भी कोई नहीं है। और योग की जब बात चले तो आदि शंकर की बात ना चले, ये ना हो सकता।
0: बिल्कुल
1: है। तो आइए योग के सबसे बड़े आचार्य शिव की उपासना करते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: तो दोस्तों अब वक्त है आपके सबसे प्यारे सेगमेंट यानी कि क्विज सेगमेंट का, जहां हम पूछेंगे आपसे दो सवाल और उनके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे आपको कार्यक्रम के अंत में।
1: बिल्कुल, तो आज का हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मैं अपने प्रश्न को दोबारा रिपीट करती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों यह है हमारे दो सवाल जिनके जवाब मिलेंगे आपको कार्यक्रम के अंत में।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। भवानी, अभी हम योग आदि की बात कर रहे थे। मुख्य रूप से जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें बात करनी चाहिए उनके अधिकारों की। तो मुझे याद आता है कि हर वर्ष 12 जून यानी आज ही के दिन को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: बिल्कुल आनंद, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें याद दिलाता है कि बचपन का स्थान स्कूल, खेल का मैदान और परिवार का स्नेह, ना कि मजदूरी, कठिन परिस्थितियों में काम करना, ये सब।
1: दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत बनाना है।
2: बिल्कुल।

0: ना कि मजदूरी, कठिन परिस्थितियों में काम करना, ये सब।
1: दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत बनाना है।
0: बिल्कुल, बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि यह सामाजिक और मानवीय चिंता का भी विषय है। जब कोई बच्चा कम उम्र में काम करने के लिए मजदूर बनता है तो उसका बचपन, शिक्षा और बेहतर भविष्य प्रभावित होता है।
1: सही कहा, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, कई बार परिस्थितियां उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर देती है। यही कारण है कि बाल श्रम को रोकना केवल सरकारों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
0: ये बात तुमने एकदम सही कही दोस्तों। बाल श्रम का अर्थ केवल कारखानों या दुकानों में काम करने तक ही सीमित नहीं है। किसी भी बच्चे को ऐसे कार्य करवाना जो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास या सुरक्षा को प्रभावित करता है, वो बाल श्रम की श्रेणी में आता है।
1: शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है भवानी। जब कोई बच्चा विद्यालय जाने के बजाय काम करता है ना, तो वह केवल वर्तमान की खुशियों से ही नहीं बल्कि भविष्य के अवसरों से भी वंचित हो जाता है।
0: यही कारण है कि सरकार, सामाजिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे और उन्हें सुरक्षित वातावरण मिले।
1: दोस्तों, भारत में भी बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। साथ ही बच्चों को विद्यालय से जोड़ने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है।
0: बिल्कुल, लेकिन दोस्तों, कानूनों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: यदि हम अपने आसपास किसी बच्चे को खतरनाक परिस्थिति में काम करते देख रहे हैं तो हमें संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर ध्यान देना चाहिए।
1: बहुत सही बात कही तुमने, और एक जागरूक नागरिक होने के रूप में हमारी छोटी सी पहल, एक छोटा सा प्रयास किसी बच्चे के जीवन में बदलाव ला सकता है।
0: बिल्कुल, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है आनंद, कि बचपन का अधिकार मिले हर बालक को।
1: क्या बात है,
0: सपनों का संसार मिले हर बालक को।
1: बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। वास्तव में हर बच्चे को सीखने, हर बच्चे को खेलने, हर बच्चे को आगे बढ़ने और हर बच्चे को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना ही चाहिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें यह संदेश देता है कि किसी भी समाज की प्रगति का सही आंकलन इस बात से किया जा सकता है कि वहां के जो बच्चे हैं उनको कितना सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन प्राप्त हुआ है।
1: आइए इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प ले कि बाल श्रम के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देंगे और ऐसा समाज बनाने में योगदान देंगे जहां हर बच्चे को अपने बचपन का पूरा आनंद लेने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य ही नहीं वर्तमान की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: ये तुमने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि एक शिक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बचपन ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकता है, और राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब उसका बच्चे जो होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। तो हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करने वाले जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, आइए अब उन्हें सलाम करें इस गीत के माध्यम से। पहले संदेश कैलाश खेर की ओर से।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
3: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
2: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर

जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आनंद जी, आजकल एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, और इसके साथ ही एक और शब्द लोगों के कानों में पड़ता है, वो है मशीन लर्निंग।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब लोग ये शब्द सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि शायद ये कोई बहुत कठिन वैज्ञानिक विषय होगा।
0: सच कहूं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, आखिर मशीन सीखती कैसे है?
1: हाँ, यही सवाल आज लाखों लोगों के मन में भी है भवानी। इसलिए मशीन लर्निंग को समझना या उसकी भाषा को समझने की बात ही हम आज करते हैं।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे रोचक विषय, जो मुझे बहुत रोचक लगा। मशीन लर्निंग आखिर है क्या आनंद जी?
1: देखो, मान लो एक छोटा बच्चा है, अगर उसे आम और सेब में फर्क बताना हो तो हम उसे बार बार फल दिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये बताते हैं कि ए फॉर एप्पल, एम फॉर मैंगो। धीरे धीरे वो खुद पहचानने लगता है कि कौन सा फल आम है और कौन सा फल सेब है।
0: यानी बच्चा अनुभव से सीखता है।
1: बिल्कुल ठीक, मशीन लर्निंग में कंप्यूटर भी कुछ ऐसे ही करता है। उसे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, है ना, और फिर वह उन उदाहरणों से पैटर्न समझकर निर्णय लेना सीखता है, सही से तैयार करता है उसे।
0: लेकिन क्या मशीन लर्निंग हमारे आसपास भी मौजूद है आनंद?
1: जी हाँ, और शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा।
0: जैसे
1: आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल पर गाना सुनते हो तो कुछ समय बाद ऐप आपको आपकी पसंद के गाने सुझाने लगता है।
0: हाँ बिल्कुल, कई बार तो आनंद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मोबाइल मेरी पसंद एकदम अच्छे से जानता हो।
1: यही मशीन लर्निंग का कमाल है बेटा।
0: अच्छा,
1: वह आपके द्वारा सुने गए गानों का विश्लेषण करके आपकी पसंद को समझने की कोशिश करता है।
0: अच्छा, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है अब ये भी बता दीजिए।
1: जरूर, स्पैम संदेश पहचानने में, ऑनलाइन खरीदारी की सिफारिशों में, है ना, आप देखते हैं मोबाइल में हमारे चलते ही ऑनलाइन खरीदारी का कोई सिफारिश आ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: वीडियो प्लेटफॉर्म पर सुझाए जाने वाले वीडियो के बारे में, मौसम के अनुमान के बारे में, और यहाँ तक कि अस्पतालों में भी।
0: इसका मतलब मशीन हमारे लिए काफी हेल्पफुल बन चुकी है।
1: हाँ जी, इसका उद्देश्य इंसानों की सहायता करना है और उनकी जगह लेना नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना।
0: लेकिन क्या मशीन हमसे, मतलब जो मशीन होती है, जरूरी थोड़ी है कि उसका निर्णय हमेशा सही ही हो, कभी कभी गलत भी तो हो सकता है ना?
1: नहीं, मशीन भी गलती कर सकती है भवानी, अगर उसे गलत या अधूरी जानकारी दी जाए। देखिए, ये तो वही बात है कि आप जितना इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट निकलेगा।
0: बिल्कुल,
1: उसका निर्णय भी गलत हो सकता है, इसलिए अच्छे डेटा और सही प्रशिक्षण को बहुत आवश्यकता होती है।
0: मतलब आने

0: समय में मशीन लर्निंग का भविष्य कैसा दिखाई देगा फिर?
1: आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि में, परिवहन में और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग तेजी से बढ़ेगा।
0: मतलब जो भी व्यक्ति इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए वो फिर इसमें कैसे बढ़े?
1: सबसे पहले गणित और कंप्यूटर की बुनियादी समझ मजबूत करें,
0: बिल्कुल
1: जिज्ञासु बने रहे और नई तकनीक के बारे में सीखते रहे। और सबसे जरूरी बात है कि तकनीक से डरने का नहीं है ना, बिल्कुल डरना नहीं है, नई तकनीक को समझना है, उसका सही उपयोग करना, और यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: तो दोस्तों, मशीन लर्निंग कोई जादू नहीं बल्कि मशीनों को उदाहरण और अनुभव से सीखने की एक तकनीक है। मशीन लर्निंग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है और भविष्य में भी इसकी भूमिका और भी बढ़ने वाली है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: भवानी, आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पंखा भी हमें देखकर कह रहा है, भाई मुझसे जितना हो सकता था मैं कर चुका, अब ना हो पाएगा।
3: बिल्कुल सही कहा। और बिजली का बिल देखकर तो लगता है कि बिजली विभाग हमारे घर के सदस्य बन गए हैं।
2: इसलिए आज हमें बात करने की आवश्यकता है एक ऐसे विषय की जो हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, और वो है नवीकरणीय ऊर्जा।
3: ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति से मिलती है और बार बार खत्म भी नहीं होती, उसे नवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों।
2: मतलब जैसे सूरज।
3: बिल्कुल, सूरज रोज उगता है, हम उसकी रोशनी और गर्मी से बिजली बना सकते हैं। इसी तरह हवा, पानी, बायोगैस आदि सभी नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं।
2: यानी प्रकृति कह रही है, लो बेटा मुफ्त में ऊर्जा ले लो, बस मेरी देखभाल करते रहना।
3: ये बात एकदम सही कही आनंद।
2: लेकिन अभी तो हम कोयला, पेट्रोल और डीजल से काम चला रहे हैं, फिर इसकी जरूरत क्यों है?
3: क्योंकि ये संसाधन सीमित हैं, एक दिन खत्म हो सकते हैं, साथ ही इनसे प्रदूषण भी होता है।
2: बिल्कुल।
3: मतलब पेट्रोल डीजल जैसे जितने, जैसे एक साथ जितने दोस्त है ना, जो जेब भी खाली करते हैं और वातावरण को भी दूषित करते हैं, जबकि नवीनीकरणीय ऊर्जा एक ऐसा दोस्त है जो मुफ्त में मदद भी करता है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है।
2: ये तुमने बड़ी जोरदार बात कही दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो सौर ऊर्जा यानी कि सूरज की ऊर्जा। आपने कई घरों की छतों पर बड़े बड़े सोलर पैनल देखे होंगे। पहले मुझे लगता था कि ये छत पर रखे हुए जैसे कोई बड़े मोबाइल के चार्जर हो।
3: और कुछ कुछ वैसे ही समझ लीजिए, ये सूरज की रोशनी को बिजली में बदल देते हैं। सूरज दिन भर काम करता है और हमें बिजली देता है, इससे बिजली का बिल भी कम आता है दोस्तों।
2: अब बात करते हैं हम हवा, यानी बोले तो विंड एनर्जी की। हवा सिर्फ गर्मी में राहत देने के लिए नहीं, इससे बिजली भी बनाई जा सकती है।
3: वो कैसे?
2: आपने बड़े बड़े पंखे जैसे टावर देखे होंगे।
3: हाँ।
2: दूर से देखकर लगता है जैसे कोई विशाल का पंखा खेतों में खड़ा है। इन्हें विंड टर्बाइन बोलते हैं। हवा चलती है और इनके पंखे घूमते हैं और तेज घूमते हैं और तेज घूमते हैं और बिजली बनती जाती है।
3: अब बात करते हैं दोस्तों साथ ही जल ऊर्जा की। जब बांधों में पानी जमा किया जाता है और फिर उसे तेज गति से छोड़ा जाता है, तब टरबाइन घूमते हैं और बिजली बनती है। यानी पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, घर में रोशनी भी लाता है।
2: साथ ही बायोगैस भी हमारे लिए काफी यूजफुल है दोस्तों। गाँव में पशुओं के गोबर और जैविक कचरे से गैस बनाई जाती है, जिसे बायोगैस कहते हैं। यानी जो चीज हम बेकार समझते हैं, वही ऊर्जा का खजाना बन सकती है।
3: यही तो खास बात है नवीनीकरण ऊर्जा की, इससे हमें काफी बेनिफिट मिलता है। जैसे प्रदूषण कम होता है, दूसरा ये ऊर्जा लंबे समय तक उपलब्ध रहती है, और तीसरा बिजली में खर्च में कमी आती है।
2: इसीलिए तो भारत तेजी से सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। देश के कई राज्यों में बड़े बड़े सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। यानी हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
3: याद रखिए दोस्तों, ऊर्जा सिर्फ बिजली नहीं है, बल्कि विकास, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का आधार भी है।
2: और दोस्तों, अगर हम आज प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति कल हमारा साथ देगी। तो ऊर्जा की अगर बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो चलिए सुनते हैं एक एनर्जेटिक सॉन्ग।

0: भवानी,
1: आजकल मैं देखता हूं कि लोग मोबाइल पर इतना लिखते हैं कि अंगूठे तो लेखक बन गए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमें लिखना नहीं आता।
2: बिल्कुल सही कहा। सुबह गुड मॉर्निंग लिखते हैं, दोपहर में क्या कर रहे हो, और रात को लिखते हैं गुड नाइट, लेकिन जब दो पन्ने लिखने की बात आती है तो दिमाग कहता है मैं छुट्टी पर गया हूँ भाई।
1: और इसी समस्या का समाधान जो है हम लेकर आ गए हैं दोस्तों आपके लिए, यानी लेखक, यानी अपने विचारों को शब्दों में ढालने की कला। और अच्छी बात यह है कि यह कला किसी के पास जन्म से नहीं होती, बल्कि अभ्यास से विकसित की जा सकती है।
2: आनंद, जब मैं इस टॉपिक पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती हूँ तो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि लिखना जरूरी थोड़ी है, हमको लेखक थोड़ी बनना है, कभी बस अभी तो वही चल रहा है कि कॉपी करो, पेस्ट करो और बस खत्म बात।
1: देखो भवानी, लिखना सिर्फ लेखक बनने के लिए नहीं होता, लिखना हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करना सिखाता है। जब हम लिखते हैं तो हमारा सोचने का तरीका भी बेहतर होता है, यानी लिखना दिमाग की एक्सरसाइज जैसा है।
2: बिल्कुल, जैसे शरीर को फिट रखने के लिए अभी हमने बात की व्यायाम जरूरी है, योग जरूरी है, वैसे ही सोच को मजबूत बनाने के लिए लेखन जरूरी है। और मुझे लगता है कि लिखने से याददाश्त भी बेहतर होती है, जो बात हम लिखते हैं वह हमें लंबे समय तक याद रहती है।
1: बिल्कुल, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमें लिखना नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग शुरुआत में ही परफेक्ट लिखना चाहते हैं।
2: बिल्कुल,
1: वे सोचते हैं कि पहली ही बार में उनकी रचना किसी बड़े लेखक जैसी होनी चाहिए, यानी पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही छत पर पहुंचने की उम्मीद।
2: बिल्कुल, जबकि हर अच्छा लेखक कभी ना कभी शुरुआती लेखक ही होता है, क्यों? कोई भी बच्चा पहली बार में सुंदर अक्षर नहीं लिखना सीखता, अभ्यास से ही लिखावट सुधरती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लेखन का अभ्यास कैसे करें आनंद?
1: जी हाँ, यही सबको जानना चाहिए कि सबसे आसान तरीका है कि रोज थोड़ा थोड़ा लिखे। भवानी बाबा कहा करते थे कि कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो, जहाँ रुका है वहाँ आगे बढ़कर सो, यानी कि आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा लिखे। बस 5 या 10 मिनट अपने दिन के बारे में लिखिए, आज क्या किया, किससे मिले, क्या सीखा, अपनी छोटी सी डायरी बनाइए। शुरुआत

0: के लिए डायरी लेखन सबसे अच्छा अभ्यास है।
1: ये बात आपने बिल्कुल सही कही आनंद, लेकिन मैंने सुना है कि अच्छा लेखन बनने के लिए अच्छा पाठक बनना जरूरी है।
0: ये 100 आने सच है। जितना हम पढ़ते हैं उतने नए शब्द, उतने नए विचार, उतने कहने के तरीके, यानी कि हम सीखते जाते हैं। पढ़ना और लिखना दोनों दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखने के लिए सामग्री आएगी कहाँ से? छोटी छोटी चीज़ों पर लिखना हम शुरुआत कर सकते हैं।
1: अगर किसी को विषय ही नहीं मिले तो वो क्या करे?
0: विषयों की कमी है ही नहीं भवानी। अपने घर पर लिखिए, अपने गांव पर लिखिए, बारिश पर लिखिए, बचपन पर लिखिए, किसी याद पर लिखिए, किसी बात पर लिखिए, और फिर इस बात पर कि सुबह जल्दी उठना है, कितना काम करना है, कितने कठिन काम हुए, सब पर लिखा जा सकता है।
1: भाई ये जो टॉपिक है ना कि सुबह जल्दी उठना कितना कठिन काम है, इस पर तो मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ।
0: बिल्कुल, तुम नहीं है बल्कि कई लोग ऐसे होंगे भवानी जो अपनी दिनचर्या पर पूरी किताब लिख सकते हैं। पर तुम्हें पता है कि एक और समस्या आती है, जो लोग गलतियों से बहुत डरते हैं, और सबसे बड़ी यही बात होती है कि वो छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं उन्हें करने से डरते रहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा कि रोज़ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन लिखते रहिए। फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है, सोचने की क्षमता बेहतर होती है, भाषा समृद्ध होती है, अभिव्यक्ति की कला विकसित होती है, रचनात्मकता बढ़ती है, और सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपके मन की बात आसानी से व्यक्त आप कर पाते हैं।
1: याद रखिए, बड़ा लेखक बनने के लिए बड़ा कदम नहीं बल्कि रोज एक छोटा कदम ही जरूरी होता है। रोज कुछ पंक्तियां लिखिए, पढ़िए, सोचिए और लिखिए, और सबसे जरूरी बात, अभ्यास करते रहिए।

0: मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा।
1: क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया?
0: पूरा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है।
1: मुझे भी कुछ कुछ

0: दोस्तों अब वक्त है रोजगार सूचना का। हमारे युवा साथी बेसब्री से इन सूचनाओं का इंतजार करते हैं। राजस्थान के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 3,951 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 25 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 23 जून 2026 रात 11:59 तक है और ये भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। साथ ही साथ भवानी, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो हमने हमारे युवा साथियों से कुछ प्रश्न पूछे थे।
1: बिल्कुल,
0: और निश्चित ही हमारे युवा साथी उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ कर बैठे होंगे। तो

0: ये जल्दी से अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न था, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?
1: तो इसका सही उत्तर था 21 जून।
0: बहुत अच्छे। और हमारा दूसरा प्रश्न था,
1: भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर है 3।
0: तुम ही बता दो सब कुछ। बहुत बढ़िया। और हम देखिए, घड़ी की जो टिक टिक है वो ये बता रही है कि अब हमारे ही आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। आप युवा दोस्तों से मिलना अपने आप में एक बेहतरीन शुरुआत सी होती है। आज जैसे हमने जो बातचीत की है, अपने जीवनचर्या में उतारने की आप कोशिश कीजिए, जिनमें योग है, चाहे आप अन्य विषयों को भी है। आइए अपने जीवन से दिनचर्या को हम यूं ही बेहतरीन बनाएंगे। इसी के साथ
1: नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी भवानी जंगाणी और आनंद कुमार पुरोहित। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:55 हुए हैं और ये समय है आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा जानने का। तो लीजिए सुनिए आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संध्या 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इसमें चर्चा होगी बरसात से पूर्व पशु टीकाकरण जरूरी, वन और वन्य जीव संरक्षण मेक इन इंडिया, साथ में चर्चा होगी आओ मिलकर वृक्ष लगाएं। ये सारी चर्चाओं के साथ में आज हम लुप्त उठा पाएंगे लोक गीतों का भी। आज के इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे राकेश कुमार जोशी और सत्यनारायण शर्मा।

7:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत और रात्रि 8 बजे आप और हम मिल करके सुन पाएंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये सेगमेंट, ये प्रोग्राम हम 9:15 पर भी आप और हम दोनों साथ में होंगे।

रात्रि 8:30 पर होगा लोक संगीत। 9:30 पर आज हम हमारे स्टूडियो से सुन पाएंगे स्थानीय नाटक जाहिदा और जानकी। लेखक हैं इसके श्री विनोद कृष्ण भट्ट। ये कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से प्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 पर।

रात्रि 10 बजे हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम गुलिस्तान। ये कार्यक्रम होगा उर्दू कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज होंगी रीता गांगुली, जिनमें ख्याल होगा दादरा ठुमरी। ये प्रसारित किया जाएगा हमारे स्टूडियो से रात्रि 10:30 पर।

6:30 पर होगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात सुनिएगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। पर होगा फिल्म संगीत। आज आप फिल्म संगीत में सुन पाएंगे एक ही फिल्म से गीत, जिसके लिए हमने चुना है आप लोगों के लिए फिल्म हीना को।

देश विदेश के समाचार जानने के लिए सुनिएगा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, तत्पश्चात आप सुनेंगे 9 बजे न्यूज़ @9 हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: ये थी आज के हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में

0: अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत एआई मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत एआई मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की एआई यात्रा में महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से गीत, और हमने आप लोगों के लिए चुना है एक ही फिल्म से गीत, फिल्म हीना से। लीजिए हीना फिल्म से ये गीत सुनिएगा लता मंगेशकर की आवाज़ में।

Akashwadi at 90. आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म के गीत जिसमें हमने आपके लिए लिया है उस फिल्म को हिना को। लीजिए उसका अगला गीत सुनिएगा लता मंगेशकर की आवाज़ में, ये प्यार भरा नगमा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुन रहे हैं आज आप एक ही फिल्म के गीत और ये एक ही फिल्म है हीना। लीजिए अगला गीत सुनिएगा इसी फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज़ में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:30 होने को है। लीजिए अब सुनिए हमारे जयपुर केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी नजर आ रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण के आधारशिला बताया है। आज देश भर में महिला नेतृत्व वाले विकास के सकारात्मक परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियाँ महिलाओं को सम्मान देने और सशक्तिकरण के लिए है। इससे महिलाएं आज विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और नवाचार के क्षेत्रों में नई उड़ान भर रही हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में भी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं।
0: प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में हुई इस कार्यशाला में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने किसानों से कहा कि वे रसायन मुक्त अनाज तैयार करें, इस प्रकार के अनाज से कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है। गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती के कारण आज देश भर में खेतों की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन निचले स्तर पर पहुंचना चिंताजनक है। उन्होंने सूक्ष्म जीव और मित्र कीट द्वारा मिट्टी को मुलायम करने और उर्वरकता बढ़ाने की पद्धति पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों ने पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग जैसे प्राकृतिक खेती के तरीकों से मानव और मिट्टी दोनों की सेहत का ध्यान रखा है, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती माता को जहरीले रसायन और कीटनाशकों से नुकसान होता है।
2: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी, वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके, उसमें बेसन डाल करके, उसमें ई डाल करके, उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छांट करके उस पर डाल देते थे, चार दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब 2.5 फीट का 3 फीट का हो जाता था तो हैरों से या हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
0: बूंदी जिले की केशवराय पाटन, तालेड़ा और हिंदोली पंचायत समितियों में कामकाज में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर बीडीओ सहित 11 कामकाज अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर ये व्यापक कार्रवाई की गई। इन ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ 16 CCA के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने के

0: आदेश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि श्री दिलावर ने हाल ही में इन पंचायतों का औचक निरीक्षण किया था। नीट यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा की अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यह बदलाव करते हुए बताया कि अब परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक रहेगा। इधर राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 का आयोजन इस साल 6 सितंबर को किया जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से ये परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 14 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि इस बार ये परीक्षा 35 विषयों में आयोजित होगी। इसमें राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, फारसी और उर्दू 5 नए विषय शामिल किए गए हैं। प्रदेश में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। इनके जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगम तरीके से दिया जाएगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों के माध्यम से मौके पर ही विभिन्न विभागों से जुड़े काम किए जाएंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया और लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बैरवा आज जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना क्रियान्विति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रोत्साहन राशि के साथ आवश्यक उपकरण भी देने को कहा। डॉ. बैरवा ने लोगों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों की नियमित फिटनेस जांच करवाने और चालकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर भी जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने युवा पीढ़ी से हर तरह के नशे से दूर रहने की अपील की है। श्री अठावले आज जयपुर में नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नशे से समाज के हर तबके को नुकसान होता है। उन्होंने समारोह में सभी लोगों से अपने आसपास मौजूद नशा करने वालों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। जातिगत जनगणना को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। अब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिलेगी। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, SC ST को फायदा मिला है, और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: आज बाल श्रम निषेध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। देश में भी कृषि, होटल उद्योग, ईंट भट्टों, पटाखा निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लाखों बच्चे काम कर रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक समस्या और सामाजिक विषमता को जिम्मेदार बताया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर करौली में बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान में 12 जुलाई तक सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां होगी। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने और बाल विवाह की रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। उधर पाली के सुमेरपुर में एक बच्ची को बालश्रम से मुक्त करवाया गया। और अब मौसम संबंधी

0: जानकारी। राज्य में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली और हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर में आज ओले भी गिरे। उधर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हीटवेव चली और गर्म रात्रि रही। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आंधी बारिश की गतिविधियों में आज से बढ़ोतरी के आसार है। बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभागों के कुछ भाग में गरज के साथ मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंधी बारिश की गतिविधियां 16 जून तक जारी रह सकती हैं।
1: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले एक दो दिन पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: राजधानी जयपुर में किराए पर वाहन उपलब्ध करवाने वाली रेंट कैब और बाइक रेंटल सेवाओं पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव पचार ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों के लिए किराए के वाहनों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ये सख्ती की गई है। उन्होंने बताया कि कई व्यक्तियों और फर्मों की बगैर पंजीकरण के ही वाहन किराए पर देने की शिकायतें सामने आई हैं। श्री पचार ने बताया कि किराए पर वाहन देने के लिए परिवहन विभाग का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही सभी रेंटल फर्मों को अपने कार्मिकों का पुलिस सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, वहीं पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। सीकर अपनी हवेलियों, बाटिक कला और धार्मिक स्थलों के साथ साथ शौर्य के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। इसी पहचान के साथ जिले की चिट्ठी की शुरुआत करते हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने गौरव सेनानियों, वीरांगनाओं और बलिदानी योद्धाओं के आश्रितों से अपने सैन्य और नागरिक दस्तावेजों की जांच कराने का आग्रह किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल बिजेंद्र सिंह महला ने बताया कि नाम, नाम की वर्तनी, जन्म तिथि तथा पारिवारिक विवरण में अंतर होने के कारण पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शैक्षणिक सुविधाओं और अन्य देय लाभों में कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जन आधार, राशन कार्ड तथा अन्य अभिलेखों का मिलान करने और आवश्यकता होने पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर संशोधन करवाने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल पीड़ित दिवस के अवसर पर सीकर के राजकीय संप्रेषण और किशोर गृह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाल श्रम, मानव तस्करी और शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में किशोरों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीवन जीने तथा भविष्य में अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। विश्व तंबाकू

0: निषेध दिवस पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे स्टेशन, बड़ा तालाब, मारू पार्क सहित कई स्थानों पर लोगों को तंबाकू और नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। स्काउट गाइड के सदस्यों ने नृत्य, नाटिका, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर फतेहपुर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महावारी स्वच्छता, स्वास्थ्य प्रबंधन और एनीमिया की रोकथाम की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि महावारी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इससे जुड़े भ्रम तथा सामाजिक वर्जनाओं को दूर करना आवश्यक है। महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित भोजन लेने और आयरन युक्त आहार अपनाने की सलाह दी गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में शहरी निकायों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से उड़ान 10 समर कैंप में महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। कैंप में हस्तकला, कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई, योग, नृत्य और अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, हेल्पलाइन सेवाओं, लाडो प्रोत्साहन योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। संबंधित व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आमजन से कपड़े और जूट के थैलों का उपयोग करने की अपील की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत नगर परिषद द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। जयपुर रोड से बाईपास तक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए। नगर परिषद ने व्यापारियों और संस्थानों से सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने तथा नियमों की पालना करने का आग्रह किया है। सीकर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, सरकार लारला 12 साल माए महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू जयपुर माए राज्य स्तरीय कार्यशाला राखी जी। राज्य सरकार सड़का माथे हिफाजत न जन आंदोलन बनावन सारू भेड़ी जिम्मेदारी सागे काम करन री अपील कीनी। और प्रदेश उगनी हल्का माए गरज चमक सागे बरसात, आतुनी हल्का माए लू रोकोप। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि केंद्र सरकार लारला 12 साल माए देश बनावन रा काम माए महिलावारी पूरा बूता सागे भागीदारी रो एहसास करावन बाबत अनुकूल वातावरण तैयार किन्नो है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो के हर हल्का माए महिलावारी मौजूदगी नजर आ रही है। पेश है समाचार कक्ष सलेहा गाजी री रपट।
2: प्रधानमंत्री संस्कृत श्लोक रो जिक्र करता थका महिलावा ने देश बनावन री नींव बताई। आज देश भर माए महिलावारी अगुवाई माए विकास रा बेहतर नतीजा साफ निजर आ रहा है। स्वयं सहायता समूह रे जरिए गावाई हल्का री महिलावा ने ई माली तौरू खुदरे पाण उबी करी जा रही है और केंद्र सरकार री नीतियां महिलावा रो मान बधावन और वा ने मजबूत बनावन सारू है। इनु महिलावा विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और नवाचारा रा हल्का माए खूब आगे बढ़ रही है। केंद्र माए एनडीए रा राजरा 12 साल पूरा वेवन रा सिलसिला माए राज्य माई 3 दिन ताई प्रदर्शनियां लगाई जा रही है।
1: केंद्र सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक निवेश प्लेटफॉर्म रो प्रचार करता था का बतावन वाला वीडियो ने

0: फर्जी बतायो है। पत्र सूचना कार्यालय रिफैक्ट चेक इकाई वीडियो ने गलत बताता था का कहो का इनमाए 22,000 रुपया निवेश मा थे रोजीना 80,000 और हर महीना 24,00,000 रुपया मिलन रो दावो करीचियो है। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई रे मुजब ओ वीडियो एआई यूं बनाईचियो है। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू आज जयपुर माए प्रदेश स्तर री प्राकृतिक खेती कार्यशाला और मल्लखंब प्रदर्शन राखीचियो। इनमाए राज्यपाल हरिभाव बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानाओं कीड़ा मारण री रासायनिक दवाइयां कम काम लेवण और प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। श्री बागड़े किसानों रसायन काम लिया बगैर अनाज उपजार जनता ने बीमारियां बचावण माए मदद करण री अरज कीनी। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो का किसान पंचगव्य जीवामृत बीजामृत और मल्चिंग सरीखा प्राकृतिक खेती रा तरीकाओं इंसान और मिट्टी दोनों री सेहत रो ध्यान रखे है। मुख्यमंत्री कहो के मौजूदा दौर माए रासायनिक खाद मोटी तादाद माए काम लेवाणु मिट्टी रो स्वास्थ्य खराब भी है।
1: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें ई डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छांट करके उस पर डाल देते थे, चार दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब 2.5 फीट का 3 फीट का हो जाता था तो हैरों से हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
0: श्री शर्मा कहो के किसाना री बरकत सारू राज्य सरकार पानी और बिजली री उपलब्धता तय करण री विगतवार योजना बनाई है। ई मौके गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत कहो के रासायनिक खेती रा कारण खेता माए मिट्टी माए ऑर्गेनिक कार्बन घणो कम वेक्यो है। बूंदी जिला री केशव राय पाटन तालेड़ा और हिंडोली पंचायत समितियां रा कामकाज माए लापरवाही रा आरोप माए बीडीओ और 11 ग्राम विकास अधिकारियां ने मुअत्तल कर दिया चिया है। आ ग्राम विकास अधिकारियां रे खिलाफ 16 CCA रातेत विभागीय कार्रवाई शुरू करण रा हुक्म दिया चिया है। प्रदेश माए आज शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर शुरू भया। 15 जुलाई तक चलन वाला आ शिविरां रे जरिए लोगां ने न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो आसानी उंदी उचारियो है और न्यारा न्यारा महकमाओं जुड़िया काम मौके ही निपटाया जा रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माए शहरी सेवा शिविर री शुरुआत कीनी। ई मौके वे लोगाओं शिविर माए मुहैया कराया जा रहा सुविधा नी जानकारी लीनी और जमीरा पट्टा दीना। मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा माए अब विद्यार्थियों ने 15 मिनट बत्ता मिलेला। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA रे मुजब अब 195 मिनट री आ परीक्षा दोपहर पाछे 2 बजाऊ सिंजा 5:15 ताई ली जावेला। दूजीगानी कोटा विश्वविद्यालय री ओरू राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 इस साल 6 सितंबर न ली जावेला। इसारू 14 जून और 15 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकाओ अर्जी दी जा सकेला। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर BP सारस्वत बतायो के इन दफा आ परीक्षा राजस्थानी सिंधी पंजाबी फारसी और उर्दू समेत 35 विषया माए ली जावेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सड़का माथा हिफाजत न जनता रो आंदोलन बनावण सारू सगला जिम्मेदारी सागे काम करण बाबत कहो है। वे आज जयपुर माए स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल री मीटिंग माए बोल रहा है। उप मुख्यमंत्री सड़का माथा हिफाजत रा जतन असरदार तरीकाओं करण सड़क हादसा री जदमाए आवण वाला ने तुरंत मदद और बेहतर इलाज मुहैया करावण राई हुक्म दीना। वह सड़क सुरक्षा मित्रा ने प्रोत्साहन राशि सागे जरूरी साजो सामान देवन बाबती कहो। डॉक्टर बैरवा जनता सारू आसान और आरामदायक सफर तय करण सारू बसा री फिटनेस जांच करावण और बस चलावण वाला रा स्वास्थ्य री जांच करावण माथे जोर दीनो। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास

0: अवले नौजवानों नशो नी करण बाबत कहो है। वह आज जयपुर माए नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन माए बोल रहा है। अठावले नौजवानों वारी ताकत देश बनावन माए लगावन सारू कहो। केंद्रीय राज्य मंत्री कहो कि नशाओं समाज रा हर तबका ने नुकसान फै है। वह सगड़ा लोगों ने आरे सारे रा नशो करण वाला ने नशो छोड़ बा सारू प्रेरित करण बाबत कहो। मंत्री जाति रा आधार उन जनगणना ने देश सारू चोखी बताई।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। अब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिलेगी। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, एससी एसटी को, ओबीसी को फायदा मिला है, और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: श्री अठावले कहो कि नशा मुक्ति केंद्र खोलन वाला ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय री ओर उमाली मदद दी जावेला। वह एक गैर सरकारी संस्थान का नींव राखी जया नागरिक और दिव्यांग जन सम्मान समारोह में आई शिरकत कीनी। इस मौके वह कहो कि मंत्रालय दिव्यांग जन ने जरूरी साजो सामान मुहैया कराने तय कीनो है। आज बाल श्रम निषेध दिवस मनाई चियो। इस मौके करौली में बैक टू स्कूल अभियान शुरू करी चियो। इन तेत 12 जुलाई ताई सामुदायिक जागरूकता जुड़िया कार्यक्रम रखा जावेला। इस आगे स्कूल छोड़ चुकिया बच्चा ने उजू भणाई लिखाई जोड़बा और बालपना माए ब्याह न रोकण माथे जोर दियो चियो। जिला रा 30 गांवां रा सर्वे माए करीब 650 टाबरियां रे स्कूल छोड़बा और 600 टाबरियां रो बालपना माए ब्याह वेवण री शंकारी ठापड़ी। पाली जिला रा सुमेरपुर में एक बच्ची ने मजूरी आजाद कराई ची। रब मौसम, राज्य रा उगनी हल्का माए लारला 24 घंटा माए बादलों री गाज और बीजनिया री चमक सागे जोरदार बायरो बाजो और बिरखा फी। श्री गंगानगर माए आज ओला पड़िया। दूजी कानी आतुई हल्का माए कठे कठे लू बाजी और रात री बगती तेज गर्मी रही। प्रदेश माए घनखर ठोड़ा पारो 40-43 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो चाटियो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग माए 16 जून ताई कठे कठे बादलों री गाज सागे तेज बारिश रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 1-2 दिन पश्चिमी राजस्थान में एक की परिस्थिति रहेगी। वही उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: एशियाई खेला माए सोनारो तमगो जीतन वाला दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा देवलोक फेंक्या है। 49 साल रा राणा भारत रा निशानेबाजा ने पिस्तौल चलावण री सिखावण देवण माए लाग्योड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेता निशानेबाज जसपाल राणा रा देवलोक फेवण पर गहरो शोक जतायो है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जसपाल राणा ने चैंपियन एथलीट बताता था का कहो कि हमारा योगदान ने हमेशा याद रखियो जावेला। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार लारला 12 साल में महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू जयपुर माए राज्य स्तरीय कार्यशाला रखी जी। राज्य सरकार सड़का माथे हिफाजत ने जन आंदोलन मनावन सारू भेली जिम्मेदारी सागे काम करन री अपील कीनी। और प्रदेश रा उगनी हल्का माए गरज चमक सागे बरसात, आतुनी हल्का माए लू रो कोप। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो चावेला।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। संध्या के 7 बजे हैं और ये समय है हमारे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राकेश कुमार जोशी और सत्यनारायण शर्मा।

0: राकेश कुमार जोशी
1: और सत्यनारायण शर्मा रा घना घना राम राम।
0: सत्यनारायण भाई कई बातें आज थोड़ा यहाँ गुमसुम लाग रही है,
1: सुनने लाग रही है हाँ के भाई गर्मी इतनी पड़ रही है तो कहीं क्या करे कहीं तावड़ो हो गया परेशान।
0: तो शरीर में तर रखा करो, पानी पियो करो, सिकंजी है, पानी है, अपने लाबड़ी है
1: और कहीं है कि देखो तावड़ पड़ना भी जरूरी है कि बिरखाऊ पहला उमस गर्मी चोखी रहे जना बिरखा भी क्या चोखी हुआ करे पर बिरखाऊ पहली आपने जतन करा बे अपन पशुओं सारू भी टीकाकरण है और दूसरा जतन है बे जरूरी है।
0: बिल्कुल आपने जो पशु है नी वो पशुपालन अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था रो एक महत्वपूर्ण आधार मानी जाए क्योंकि अपना देश एक कृषि प्रधान देश है। किसान जी को है वो गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट ए पशु आप रखन पाल रखे और आजीविका रूप में यहाँ पर निर्भर रहा करे।
1: सही बात कही राकेश भाई के भाई अपने विशेष रूप अठ देखा राजस्थान में तो गाय भैंस बकरी भेड़ और ऊंट अपने आमदनी का मुख्य साधन है
0: और पशुओं का स्वास्थ्य सीधे सीधे किसान नारी आय और जीवन स्तर में प्रभावित करे
1: और कई तरह का देखो बिरखा पहला कही है कि वातावरण में नमी बढ़ जाया करे बिरखा दिना में कई तरह का जीवाणु है विषाणु है परजीवी है वह तेजी से फैलिया करे।
0: और देखो सतु भाई और जो बरसात रो मौसम है नी तेको जो कीट जिना और जल्दी फैले वो मौसम इन कारण संवेदनशील मानी जाए और ये वातावरण में नमी कीचड़ गंदगी बढ़ जाएगा और थेको जिया ये कारण मौसम में कई प्रकार ये मौसम में कई प्रकार संक्रामक जी का रोग है वे पशु में फैल जाएगा तो, जहाँ मुंह पक्का खोपक्का है गलघोंटू है लंगड़ा बुखार है और अन्य कई प्रकार का संक्रमण हो।
1: सही बात कही कि भाई देखो बीमार हुए बिर बाद इलाज करवा वो तो चोखी बात है पर आप बीमारियों बच सका यदि आप पहले ही टीकाकरण करा ला
0: टीकाकरण
1: बात करी खुरपका मुंह पक्का जी कहने एफ एम डी भी किया करे गड़गोंटू है तो यहाँ के लिए जिकी बीमारियां हैं जिकी अपन पशुओं ने कही है कि उत्पादन चाहे वो दूध उत्पादन हो या अपन खेती खड़ी में काम हो भी हमें प्रभावित कर सके।
0: हाँ बिल्कुल पशु कमजोर हो जाया करे और कई बार आप देखा लापरवाही रखा जे आप ध्यान नहीं रखा तो पशु की मृत्यु भी हो सके यानी वो सीधो सीधो प्रभाव जी कहीं वो किसान की आर्थिक स्थिति में पड़िया करे और इन खातर ई बीमारियां से बचाव रो उपाय जी को है ना वो अपने बहुत करना जरूरी है और ये वो प्रभावी जी को उपाय है वो है भगत माथे अपने टीकाकरण करना और अब आज को भगत है
1: सरकार भी कई तरह अभियान जी का इनाम चलाया करे जिके सुखाई है पशु और टीकाकरण करार अपन ये बीमारियां अपन पशुओं ने बचा सके
0: बरसात तो पहले आप टीकाकरण कराया करा और आप देखा कि मुंह पका खुरपका जी को रोग है नहीं ये जो दो बार साल में होया करे टीकाकरण मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में और गलघोंटू और लंगड़ा बुखार है बिन खातर जी की टीको है वो बरसात तो पहले मई जून महीने में एक बार जरूर आपने लगाना चाहिए।
1: सही बात कह राकेश भाई के भाई आज जिका जागरूक पशुपालक भाई है जिका बीमारी आने पहले ही आप बीमारियों बचाव कर सके के रोग से बचाव जिको है इलाज से बेहतर हो कहावत ने पशुपालन में पूरी तरह लागू हुआ थोड़ो सो खर्चो और थोड़ी सी सावधानी सु आप अपना पशुधन में गंभीर बीमारियां सु बचा
0: अपना भाई बंधु समझे कि टीकाकरण करने से पशुहारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है नी वह बढ़ जाया करे और गंभीर बीमारियां सु पशु जी को अपना सुरक्षित हो जाया करे।
1: सही बात है कि भगत सारू टीकाकरण सु पशु स्वस्थ रहे दूध रो उत्पादन बढ़े है आर्थिक नुकसान जो है वो कम हो अपनो और पशुपालक री आमदनी में बढ़ोतरी होया करे स्वस्थ पशुधन ही एक समृद्ध किसान रे और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था रो आधार है। तो कार्यक्रम में देखो अपन जो आधार है वो बातें सागे लोक गीत भी है तो अपन सगला मिल प्रार सीमा मिसार।

0: सीमानी सर गायडो गीत लो सुनियो। राकेश भाई देखो बार चाल रही है, जून महीनो और टाबरिया मस्ती का दिन चाल रहा है, छुट्टियां मना रही है स्कूल।
1: बिल्कुल बिल्कुल मस्ती का दिन है, छुट्टियां मना रही है।
0: ऐसा दिख रहा है जिका ने स्कूल में गया ही कोनी, इनमें कहीं क्या करे उछल कूद कर रहा है। तो विषय टाबर अपने विशेष ध्यान रखना है कि आपकी शिक्षा वंचित नहीं है।
1: बिल्कुल, शिक्षा प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। और जिका टाबर स्कूल नहीं गया है, अपने निगरानी में है, तो भी माँ बाप ने आप जागरूक करा। मैं ना बात क्या कि भी बच्चा का अधिकार है, ये वंचित ना करो। सरकार अपनी तरफ से निःशुल्क शिक्षा रो प्रावधान करोड़ है। तो स्कूल में जाओ, एडमिशन कराओ। सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है,
0: चाहे बालक हो चाहे बालिका, सगला ना पाने स्कूल भेजना है।
1: पढ़े लिखे इंसान की दो आंखें आया करे सत्तू भाई, तो आदमी पढ़ ले नहीं तो एक समाज में जागरूक और भी में विवेक बुद्धि रोजी को थोड़ा है
0: सही बात
1: संचार हो जाए, और भी सुखा ये है कि वो बच्चों आगे बढ़ सके।

0: राकेश भाई, खेती बाड़ी की बात करी, पशुपालन की बात करी, और आप हाँ गांव जोड़ा, खेत जोड़ा, प्रकृति जोड़ा, प्रकृति रे सागे आप उठ बैठ रहे हैं, प्रकृति रे सागे आप सामंज से बना चाला, जना अपन जीवन जी को है वो चोख होया
1: है। आपनी धरती है, अपनी धरती का फेफड़ा किन क्या सत्तु भाई ध्यान है,
0: वह है अपना हरा भरा पेड़,
1: पेड़ जंगल और ये को वन है नी, इन आप धरती का फेफड़ा कह सका, क्योंकि ए जी का वन है, ए पेड़ पौधा है, ए अपने ऑक्सीजन देवे, और ऑक्सीजन में प्राण वायु क्या करे। आज तक कोई भी आदमी, कोई भी इसो कोई कोनी जिको फैक्ट्री लगा सके ऑक्सीजन,
0: देखो ऑक्सीजन कोनी, ऑक्सीजन सागे अपने लकड़ी देवे है, औषधियां देवे है, फल फूल देवे है, और अनेक प्रकार का संसाधन जिका है नी वे अपने वन मिले,
1: और वन में देखो कितने तरह का जीव जिनावर पशु पक्षी रहे हैं, जिनका जीवन रो आधार है वो वन है, पेड़ पौधा है, और ए पेड़ पौधा ही धरती माते है, हर एक चीज रो संतुलन बना रखे है।
0: इन सारू वन और वन्य जीवन और संरक्षण जिको है बहुत ही जरूरी है,
1: जरूरी है। मिट्टी रो कटाव जिको है वो भी रोके, जलवायु ने संतुलित करे, और पर्यावरण ने संतुलन करने का काम भी अपना पेड़ पौधा है जिका क्रिया करे।
0: राजस्थान की बात करा तो कई तरह महत्वपूर्ण वन्य जीव मिले, जिके में अपना चिंकारा है, काला हिरण है, भालू है, तेंदुआ, लोमड़ी, और कई प्रकार का पक्षी जी का है वे शामिल है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का रो बाघ अभ्यारण है, इस अभ्यारण है जठे अपने वन्य जीव जी का रहे, तो बठे जिका भी रहे बेरो संरक्षण जदी हुई जद आप वन और बेनी सार संभाल।
1: लेकिन आप देखा कि समाज में या कई जगह कई शहर में आप देखा कि पेड़ पौधा ने आप आधुनिक शहरीकरण के कारण, कृषि विस्तार के कारण अवैध कटाई जी की है बाहु है,
0: और मेरे उपाय जी को यह है कि एक पेड़ जारी है तो मेरी जगह अपन 10 पेड़ लगा, यानी संरक्षण यानी सार संभाल, जहाँ टाबरिया ने पाल पोसर बड़ा करा आप वही एक पेड़ में लगा बीरो सार संभाल कर बिने बड़ो
1: जीवन खातर मंडरा रही है। क्यों? क्योंकि वन संरक्षण करना बहुत जरूरी है, बिना वन संरक्षण कर तो धरती में जीव जंतुओं असंतुलन हो सके।
0: सही बात कही, तो अपन संकल्प लेनो पड़सी के भाई अपने वन जिको है बचानो है, वन बचेला तो अपनो जीवन जिको है वो बचेला, और संदेश अपने सब जगह देनो है और अपने अपनाना है।

संदेश किसान भाई अनुहार्य है के बाता चिता और कराना पर मने एक मुठो शोक गीत जी को है वो सुनाओ सा तो अपा मोरिया जी को है सुना मार्केंडे रंगारे गायड़ो।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: प्रस्तावना: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
4: तो संदेशा सुनिया सत्तू भाई,
5: बिल्कुल संदेशा सुनिया, गीतलो भी सुनियो और अपना सबरी जी की चोखी बात है बा है कि हर कोई आई चाहे कि अपना देश आगे बढ़े, तरक्की करे, उन्नति करे, हर दिशा में आपने काम ईसा करे। तो इन सारू कई तरह की योजनाएं जी क्या नहीं अपनी सरकार अपन सारू और अपन लोग सारू चलाइए। बीमें ये किसी योजना है मेक इन इंडिया,
4: मेक इन इंडिया आप रे पग माथे जे आदमी खड़ो हुए नहीं, स्वावलंबी हुए नहीं, तो वो लंबी दूरी तक जा सके। तो आपने देश में भी देखो आजादी हुआ घणो भगत हो गयो, आपने जब आजादी मिली भी भगत कई देश भी आजाद हुआ। जब आप देखा प्रतिस्पर्धा में तो बे देश सीखा है अपने सो आगे निकल चुके हैं, लेकिन अब भी हो सके कि भी जनसंख्या के हिसाब अपनो देश बहुत बड़ो है। तो अपने देश की भी प्रगति जी की है बा दिन दुनी रात चुगुनी हो रही है। अपना देश में भी लोग जागरूक हुए है, कई ऐडी योजनावा बन रही है जिके में एक योजना है थे को जी मेक इन इंडिया
5: जिके रो शुरुआत वही है अपने देश ने
4: 25 सितंबर 2014
5: क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनानो और देश ने एक वैश्विक उत्पादन केंद्र रूप में विकसित करनो जिके रे माध्यम से देश में उद्योगों का विकास होनो, निवेश में वृद्धि होनी और रोजगार अवसर में बढ़ोतरी होनी।

0: सही बात है, और आयात पे निर्भरता अपने कम होती जा रही है, और अपा देख रहे हैं कि भी कई ऐडी चीजा बनाऊ लग गया जिकी पूरी अपा विश्व में जिका है निर्यात कर रहे हैं।
1: भाई जी आज बात करें रक्षा उत्पादन क्षेत्र में अपन देश अब आत्मनिर्भर बन रही है, दूसरे देश ने अपने निर्यात भी कर,
0: अनाज में भी अपा आत्मनिर्भर, हाँ
1: फार्मा जिकी है में भी अपा कही है कि बहुत अपा अच्छो काम अपन हो रही है। तो इससे कई क्षेत्र है जहाँ टेक्सटाइल है, आईटी सेक्टर है, तो बठे अपन क्षेत्र जिका भी हमें विशेष रूप अपन बढ़ाव मिल रही है, और अपने कौशल निर्माण द्वारा कही है कि इनमें उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है।
0: बिल्कुल, कोई भी देश जी का नागरिक है बे यदि आप में स्किल डेवलपमेंट हो जाए भी हमें कौशल रो विकास कर लेनी तो वह बहुत आगे बढ़ सके। अब बार आप देखा कि भी एआई क्षेत्र में भी भारत बहुत प्रयास कर रहे है, अंतरिक्ष में बहुत प्रयास कर रहे है, और अंतरिक्ष में आप देखा आज आप चंद्रमा पर पहुंच गया, चंद्रमा में भी इस ध्रुव पर पहुंच गया, दक्षिणी ध्रुव पर जो है आज तक कोई नहीं पहुंचो। तो जी को अंतरिक्ष रो कार्यक्रम है भी में भी आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं।
1: भाई अपने जी की जनसंख्या व अपनी शक्ति भी है, भाई इस कही है कि अपने जी का मानव संसाधन है वो अपने उपलब्ध है, और जिके द्वारा कही है कि अपना देश भारत जी को है आत्मनिर्भर बन सके और भी दिशा में एक मजबूत कदम उठा सके ये मेक इन इंडिया रे कार्यक्रम द्वारा।
0: बिल्कुल,
1: तो उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुए तो अपनों देश का ये कि विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल हो सके।
0: तो देखो फूटरी सी बात है करियो, और अब सुनाओ एक फूटरो सो गीत
1: सुनो सा।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो सर राकेश जी संदेशा गीतला सुनियो और संदेशों पहले अपन बात करी वन्य और वन जीव संरक्षण थोड़ी सी बात भी मधुरी रहेगी और बादुरी बात ये देखो भी गर्मी पड़ रही है अरे बिरखा जी की देर सवेर चालू होने वाली है और जब बिरखा आवे नहीं तो आप कई काम खेती बाड़ी कराया पर बिर सा गए आप वृक्षारोपण रो काम जिको है वो आप भगत आपने बिल्कुल करना चाहिए
3: बिल्कुल
2: सुखाई है कि आपनो पर्यावरण जिको है वो शुद्ध रहे साफ रहे संतुलित रहे और आपने आने वाली जी की पीढ़ियां हैं वे आपने याद करें
3: और ये बरसात रे मौसम में जब आप पेड़ लगावानी तो पेड़ जिका है वे जड़ा चोखी पकड़ ले अंकुरण चोखो हुए और पूरे भारत में जद भी वो मानसून सक्रिय हुए।

0: तो राकेश जी मीठो सो सोन चिड़ी गीतलो सुनियो जिको लाल चंद रंगारे गायड़ो हो।
1: अब देखो घड़ी जी को है भाई इशारो करे है कि आज रे कार्यक्रम रो बगत पूरो हो गयो है, काल नुआ गीत नुई बातें सागे फिर भाया सो आता ही करसा। सीख देव आज आपरे साथी राकेश कुमार जोशी
0: और सत्यनारायण शर्मा ने
1: मोकला मोकला राम राम।

अभी ग्रामीण श्रोताओं ने सुना अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे राकेश कुमार जोशी और सत्यनारायण शर्मा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:45 हुए हैं और समय है हमारे श्रोताओं के लिए सुगम संगीत का। लीजिए सुगम गीत में पहला सुनिएगा गीत पंकज उदास की आवाज़ में।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए सुगम संगीत में अगली आवाज़ सुनिएगा नीलम साहनी की।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। लीजिए फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिएगा आशा भोसले।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत की इस अगली कड़ी में सुनिएगा नितिन मुकेश की आवाज़ को, जिनके साथ में हैं लता मंगेशकर जी। इन दोनों की आवाज़ को आप सुन पाएंगे फिल्म क्रांति से।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने गीत सुना फिल्म डॉन से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा फिल्म शोर से। लता मंगेशकर के साथ में है मुकेश।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं और ये समय है लोक गीतों का। लीजिए लोक गीतों में पहला गीत सुनिएगा श्रीमा मिश्रा की आवाज़ में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: समंदर खान, सतार खान और रमजान खां की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। इसके साथ ही लोकगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के

0: सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था

0: तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान

0: कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के

0: आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, शादी तुझी से हो मेरी।
1: कुमार शानू की आवाज में अभी आपने गीत सुना फिल्म आंखें से, और कुमार शानू के साथ में थी आशा भोसले जी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत की अगली कड़ी में हीरो फिल्म से ये गीत सुनिएगा अनुराधा पौडवाल की आवाज में, और उनके साथ में है मनहार।

0: अनुराधा पौडवाल और मनहार की आवाज़ के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज हमारे एक कड़ी में नया कार्यक्रम स्थानीय नाटक जाहिदा और जानकी। लेखक हैं इसके श्री विनोद कृष्ण भट्ट। नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें संवाद के द्वारा, अभिनय के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त किया जा सकता है, उसे मंचन के द्वारा उस मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है जिसे हम अपनी सरल शब्दों में किसी के सामने बयां नहीं कर सकते हैं। ऐसी ही है एक विधा नाटक। तो आज आप श्रोताओं के लिए ऐसी ही विधा का एक विधान, आप लोगों के लिए स्थानीय नाटक जाहिदा और जानकी। लेखक है इनके श्री विनोद कृष्ण।
1: प्रस्तुत है नाटक जाहिदा और जानकी, लेखक विनोद कृष्ण भट्ट।

0: भारत माता की जय। भारत माता की
1: जय।
0: भारत माता की
1: जय।
0: भाइयों और बहनों, हमारे बीच सांप्रदायिक सद्भाव कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री गुरुचरण सिंह जी तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने अमूल्य विचारों से हम सबका उत्साहवर्धन करें। श्री गुरुचरण सिंह जी, तालियां।
2: भारत माता की
1: जय हो।
2: भारत माता की
1: जय हो।
2: भारत माता की
1: जय हो।
2: भाइयों और बहनों और उपस्थित माताओं, आज हमारे शहर में हुए भीषण बम ब्लास्ट को पूरा एक साल बीत चुका है। उस भीषण बम विस्फोट में मारे गए हमारे साथियों, माताओं और बहनों की आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। मैं इस मौके पर आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ऐसी घटनाओं को दोबारा नहीं होने देना है। मजहब के नाम पर हम लोगों के बीच हमेशा से दीवारें खड़ी की जाती रही हैं, लेकिन हमें सावधान रहना है। बहुत से लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की घिनौनी कोशिश फिर से कर रहे हैं, आवाम के अमन चैन को फिर से खराब करना चाहते हैं, अशांति पैदा करना चाहते हैं। हमें मजहब के नाम पर

0: दूसरे से लड़वाना चाहते हैं, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें उन दहशतगर्दों से डटकर मुकाबला करना है और कौमी एकता को फिर से बनाए रखना है, ताकि फिर कोई दहशत फैलाने वाला शख्स फिर से अपना सर उठा ना पाए।
1: तालियां।
0: भाइयों, भविष्य में कोई माँ अपने बेटे से, कोई बहन अपने भाई से, कोई पिता अपने बच्चों से और कोई पत्नी अपने पति से अलग ना हो, इसी भी तरह की अशांति पैदा नहीं होनी चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गुरुचरण सिंह जी, एक बार गुरुचरण सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं। भाइयों और बहनों, बस अभी कुछ देर में हम पिछले वर्ष आज के दिन जो भीषण बम विस्फोट की त्रासदी हुई थी उसकी कुछ झलक देखेंगे और उसके पश्चात एक एक मोमबत्ती जलाकर उन अनगिनत निर्दोषों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने इस त्रासदी में अपना अमूल्य जीवन खो दिया। आज के दिन हम इस शपथ के साथ अपने अपने घर जाएंगे कि भविष्य में हमको एकजुट होकर रहना है, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है, जैसी हमारी देश की संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति।
2: देखो देखो बहन, वो देखो, ये वही मंदिर है जहां मैंने अपने परिवार के लोगों को उस बम विस्फोट में खोया था।
3: मंदिर? तो क्या तुम लोग मंदिर गए थे?
2: नहीं नहीं, हमारा तो घर ही मंदिर के पास में है, पीछे की ओर। मेरे पति कई सालों से इस मंदिर के पुजारी थे।
3: पुजारी? क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ?
2: जानकी है मेरा नाम, और तुम?
3: मुझे जाहिदा कहते हैं। तुमने तो बहुत करीब से देखा होगा ये सब, मुझे भी कुछ बताओ ना।
2: क्या बताऊं बहन, मेरे पति, मेरी बड़ी बेटी और मेरे होने वाले दामाद मेरी ही आंखों के सामने हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गए।
3: मैंने भी उस बम विस्फोट में अपना बेटा खोया है, इकलौता बेटा।
2: क्या?
3: हाँ, मैं भी उसकी याद में एक मोमबत्ती जलाकर उसे श्रद्धांजलि देने आई हूँ।
2: लेकिन तुम्हारा बेटा उस वक्त था कहाँ? क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट तो शहर में कई जगह हुए थे।
3: फादर बता रहे थे कि वो भी उस समय इसी मंदिर में गया था किसी काम से।
2: काम से? फादर बता रहे थे? मैं कुछ समझी नहीं।
3: चर्च के फादर, मेरा बेटा उनके पास ही रहता था। मेरी शादी के पहले ही मेरे शोहर उसे फादर को सौंप आए थे जब वो एक साल का था।
2: शादी से पहले? तो क्या तुम उसकी सौतेली माँ हो?
3: हाँ, वो मेरे शोहर की पहली बीवी से था।
2: यानी तुम्हारा सौतेला बेटा?
3: सौतेला था, मगर जानकी वो ही मेरी आस था, क्योंकि उसके बाद हमारे घर पर कोई औलाद नहीं हुई।
2: क्या तुमने उसे कभी देखा था?
3: हाँ, देखा था, बचपन में, दूर से। उसके पापा ने उसे एक पार्क में दिखाया था। बहुत ही सुंदर था मेरा बेटा।
2: बच्चे, बच्चे तो होते ही सुंदर हैं। सब भगवान का रूप होते हैं जाहिदा, कोई छल कपट नहीं होता उनके मन में। मेरी बड़ी बेटी आरती, आरती भी बहुत सुंदर थी। लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी अपने बेटे से मिलने की फिर कभी इच्छा नहीं हुई?
3: कौन माँ अपने बच्चे से दूर रहना चाहती है जानकी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। पता है, बड़ा होकर तो वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगने लगा था, एकदम हीरो के जैसे।
2: लेकिन तुमने उसे देखा कहाँ?
3: बस फोटो में।
2: फोटो में?
3: हाँ, मेरे शोहर चाहते थे कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो चाहते थे कि पढ़ लिख कर वो काबिल इंसान बने, इसीलिए तो उन्होंने फादर को सौंप दिया था।
2: लेकिन तुम्हारे आने के बाद उसे लाने की कोशिश कर सकती थी तुम?
3: मैंने कई बार कहा, परंतु मेरे शौहर नहीं माने।
2: क्यों?
3: मेरे शौहर की माली हालत भी बहुत खराब थी और उन्हें एक भयानक बीमारी भी थी, उन्हें कैंसर था।
2: था मतलब? क्या वो अब?
3: हाँ जानकी बहन, वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक तो गंभीर बीमारी और ऊपर से जवान बेटे की मौत, सदमा बर्दाश्त नहीं।

0: कर पाए। ब्लास्ट के एक हफ्ते बाद ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए।
1: ओह, मुझे माफ कर देना जाहिद, मैंने तुम्हें फिजूल ही परेशान कर दिया।
0: नहीं नहीं जानकी, हम सब ने उस बम ब्लास्ट में अपना कोई ना कोई खोया है।
1: इसका मतलब अब तुम एकदम अकेली हो गई हो?
0: खुदा को यही मंजूर था जानकी। मेरे बेटे की सूरत आज भी मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। फादर के चर्च वाले स्कूल में पढ़ा करता था वो।
1: चर्च वाले स्कूल में?
0: हाँ,
1: मेरी बेटी आरती भी उसी स्कूल में पढ़ती थी।
0: अच्छा,
1: बड़ा ही अच्छा स्कूल है। अच्छे संस्कारों के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी होती है उस स्कूल में।
0: सुना है सभी जाति और धर्म के बच्चे वहाँ पढ़ते थे।
1: अरे बच्चे तो वैसे भी अबोध होते हैं, स्कूल में सब ऐसे घुल मिल कर रहते हैं मानो सभी एक ही मजहब के हो।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए तो मेरे शौहर मेरे बेटे को वहाँ छोड़ कर आए थे, क्योंकि वहाँ अच्छे संस्कार मिलते हैं।
1: सभी बच्चों को देख सुन यही लगता है उन्हें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भाईचारे से ही मतलब है।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो जानकी, मैंने भी ऐसा ही सुना था।
1: एक बार मैं अपनी बेटी के स्कूल में फीस जमा कराने गई थी। उस समय खेल घंटी हुई थी। मैं चुपचाप मेरी बेटी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उस समय सब बच्चे साथ साथ खाना खा रहे थे। इब्राहिम और आरती भी वहीं साथ साथ बैठे थे। मेरी बेटी आरती और इब्राहिम दोनों पक्के फ्रेंड्स थे।
0: अच्छा,
1: मैं चुपचाप उन दोनों के पीछे खड़ी हो गई। दोनों में नोक झोंक सी चल रही थी, जैसे कि बच्चों के बीच चलती रहती है। चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी मैं।
2: इब्राहिम, तुम फिर से मेरा खाना खा गए?
3: तुम खाना इतना बढ़िया लाती हो कि रोज रोज मुझसे रहा नहीं जाता। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा खाना खा गया?
2: मैंने चुपचाप तुम्हें खाते हुए देख लिया था जब मैं पानी पीने गई थी।
3: लेकिन तुमने भी तो मेरा खाना खाया है।
2: क्यों नहीं खाती? मुझे भी तो जोर से भूख लगी थी।
3: लेकिन तुम्हें मेरा खाना इतना बढ़िया नहीं लगा होगा।
2: वो क्यों?
3: क्योंकि तुम्हारा खाना तुम्हारी माँ अपने हाथों से बनाती है, और मैंने कभी अपने माँ के हाथ का खाना नहीं खाया।
2: क्यों?
3: क्योंकि मेरे मम्मी पापा है ही नहीं।
2: फिर तुम कहाँ रहते हो?
3: मैं तो फादर के पास रहता हूँ। और तुम कहाँ रहती हो?
2: मैं मंदिर के पास, मेरे पापा हनुमान मंदिर के पुजारी हैं।
3: तभी रोजाना मीठा लाती हो।
2: अरे उसे मीठा नहीं, उसे प्रसाद बोलते हैं।
3: बजरंग बली का प्रसाद है, तभी इतना स्वादिष्ट होता है।
2: तुम कभी मंदिर गए हो?
3: नहीं तो, फोटो में देखा है।
2: मैं तुम्हें हमारे सचमुच के मंदिर में दर्शन करा सकती हूँ।
3: क्या तुम कभी चर्च में गई हो?
2: नहीं तो, कभी नहीं।
3: तुम मुझे मंदिर दिखा देना और मैं तुम्हें चर्च दिखा दूंगा। क्यों, मैं तो वहीं रहता हूँ ना, फादर के पास।
2: अच्छा ये बताओ, तुमने कभी मस्जिद देखी है?
3: बाहर से देखी है, अंदर नहीं गया। लेकिन न जाने क्यों मेरा मन करता है अंदर जाने का, जब भी अजान होती है तब।
2: तुम जानते हो अजान क्या होती है?
3: फादर बता रहे थे कि ये भी खुदा की इबादत करने का एक तरीका है। जैसे मंदिर में पूजा होती है, आरती होती है, चर्च में प्रार्थना होती है, वैसे ही मस्जिद में अजान होती है।
2: अरे वाह, तुम तो बहुत सारी बातें जानते हो।
3: अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी मस्जिद में गई हो?
2: अरे नहीं नहीं बुद्धू राम, हम कैसे जा सकते हैं, हम तो मंदिर वाले हैं ना।
3: अरे लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि सबका मौलिक एक होता है, फिर ये सब चीजें अलग अलग क्यों बनी हुई हैं? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा।
2: पता नहीं, पापा कई बार कहते हैं कि हम लोग मंदिर वाले हैं, मस्जिद में नहीं जाते, हम ब्राह्मण हैं ना।
3: मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किस जाति का हूँ, मैं तो एक साल का था तब से फादर के पास ही रह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं मुसलमान होता तो भी क्या तुम मुझसे दोस्ती रखती?
2: कैसी बातें करते हो इब्राहिम, दोस्ती तो दोस्ती होती है, उसकी कोई जाति नहीं होती। मैं तुमसे हमेशा दोस्ती रखूंगी।
3: और मैं भी देखना, तुम्हारा पक्का वाला दोस्त बन के रहूंगा।
2: यू चीटर, बातों बातों में मेरा प्रसाद भी खा गए।
3: माफ कर दो, कल फिर लाना मैं फिर खा लूंगा, फिर लाना मैं फिर खा लूंगा, और फिर
2: सॉरी बोल दूंगा। क्यों बुद्धू राम?
1: और उन दोनों की बातें सुन देख मैं चुपचाप आरती को बिना बताए फीस जमा कराकर वापस आ गई।
0: काफी समझदार बच्चे थे और दोस्ती भी बहुत गहरी थी दोनों में।
1: हाँ, उनकी यही दोस्ती लगातार बढ़

0: बढ़ती गई और हमें पता ही नहीं लगा कि कब ये दोस्ती जवान हो गई।
1: मतलब कॉलेज में भी दोनों साथ ही रहे थे?
0: हाँ जाहिदा, हाई स्कूल में भी और कॉलेज में भी दोनों बस साथ ही रहे, काफी होशियार थे।
1: क्या इब्राहिम का तुम्हारे घर भी आना जाना था?
0: कभी कभार आ जाता था, मेरी बहुत इज्जत करता था, मुझे अपनी माँ की तरह समझता था और जब भी मिलता था दिल की सारी बातें मुझसे कर लेता था।
1: इसका मतलब वो काफी समझदार था। तुम्हारी बेटी भी सचमुच काफी समझदार थी, तभी तो इतने सालों दोस्ती कायम रही।
0: सो तो है, एक दूसरे पर पूरा विश्वास था दोनों को, तभी तो मैं भी निश्चिंत रहती थी, क्योंकि आजकल की पढ़ाई लिखाई है ही ऐसी, देर अमेर हो ही जाती है और फिर कॉलेज के फंक्शंस। लेकिन कभी भी देर हो जाती थी तो इब्राहिम खुद छोड़कर जाता था आरती को।
1: अच्छा, इसका मतलब अपनी फ्रेंडशिप में काफी ईमानदार थे दोनों।
0: लेकिन आरती के पापा को इब्राहिम थोड़ा कम पसंद था।
1: क्यों? वो तो तुम्हारे घर के मेंबर जैसा ही था। फिर भी
0: उनको इब्राहिम के बारे में ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता था, और एक दिन ये बात खुलकर सामने आ गई जब मैंने उनसे आरती के कॉलेज ट्रिप पर नैनीताल जाने की बात की, तो कहने लगे कि
2: कान खोलकर सुन लो जानकी, आरती कॉलेज ट्रिप में नैनीताल नहीं जाएगी।
0: ये आप क्या कह रहे हैं जी?
2: बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बहुत सिर चढ़ा रखा है तुमने आरती को, हर बात में हाँ में हाँ मिलाती रहती है उसकी।
0: लेकिन कोई कारण भी तो होना चाहिए नहीं भेजने का।
2: मैंने कह दिया सो कह दिया, बस यही फाइनल है।
3: लेकिन पापा, इसमें तकलीफ क्या है? बड़ी मुश्किल से तो कॉलेज ट्रिप में जाने का मौका मिल रहा है दीदी को, और फिर दीदी अकेले थोड़ी जा रही है।
2: मुझे सब मालूम है, कई सारे लड़के लड़कियां जा रहे हैं, लेकिन मैंने जब एक बार कह दिया तो कह दिया, बस।
3: लेकिन कोई तो वजह होगी पापा, मैं अपने कॉलेज के लोगों से क्या कहूंगी, मैंने तो सबसे जाने के लिए हाँ कर दी है।
2: वजह बताना कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई पूछे तो कह देना कि पापा ने मना कर दिया है।
0: अरे लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मना क्यों कर रहे हैं।
2: अरे जानकी, आजकल जमाना खराब है, यहाँ तो हम इन बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन वहाँ आरती का ध्यान कौन रखेगा? अरे इसको तो बाहर जाने का अनुभव भी नहीं है।
3: इसीलिए तो दीदी जाना चाहती है पापा, जाएगी नहीं तो अनुभव कैसे होगा।
4: इतना अच्छा मौका है पापा, और फिर अब मैं बच्ची थोड़ी ही हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अपना भला बुरा सब समझ सकती हूँ।
0: आरती ठीक ही तो कह रही है जी, अब कॉलेज में पढ़ रही है, समझदार है, जाएगी आएगी नहीं तो सीखेगी कैसे। अरे आगे जाकर अपनी जिम्मेदारी उसे खुद ही तो निभानी है, और अपने पैरों पर भी तो खड़ा होना है।
4: पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं फोन पर लगातार आपसे कॉन्टेक्ट में रहूंगी।
2: अरे लेकिन जानकी तुम समझने की कोशिश तो करो, कल को कोई परेशानी आ जाए, बीमार हो जाए, तो वहाँ अनजान जगह में इसे कौन संभालेगा?
0: आप फिजूल ही चिंता कर रहे हो जी, इतने सारे लड़के लड़कियां जा रहे हैं साथ में, और फिर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, स्टाफ के लोग हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं।
4: और पापा मेरे साथ इब्राहिम भी तो जा रहा है। हाँ। हम रखेंगे ना एक दूसरे का ख्याल।
0: हाँ।
4: क्यों मम्मी?
0: और नहीं तो क्या?
2: मैं देख रहा हूँ कि आजकल इब्राहिम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे हो तुम सब।
0: लेकिन भरोसा ना करने का भी कोई कारण तो हो, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर बचपन से दोस्त हैं, साथ में पढ़ लिख रहे हैं।
2: बचपन की बात अलग थी जानकी, समझा करो, अब बेटी जवान हो गई है, इस उम्र में बेटी की चिंता होना स्वाभाविक है, और फिर कल को भगवान ना करे कोई परेशानी हो गई तो हम कहाँ ढूंढेंगे उस इब्राहिम को, जिसकी ना जात का पता है ना उसके माँ बाप का पता है।
0: अजी आप बेकार की बातें सोचना बंद कर दीजिए, मैं भी आरती की माँ हूँ ना, मुझे भी पूरी चिंता है इसकी, लेकिन मुझे इब्राहिम पर भी पूरा विश्वास है।
4: पापा प्लीज प्लीज पापा मान जाइए ना, हमारे ग्रुप के सारे लोग जा रहे हैं।
2: अच्छा बाबा ठीक है, जानकी अगर तुमको इतना ही विश्वास है तो ठीक है, करो इसके जाने की तैयारी शुरू। लेकिन लेकिन एक बात का ध्यान रखना।
0: हाँ।
2: इब्राहिम को भी समझा देना कि लगातार मोबाइल पर संपर्क में रहे।
4: ओह पापा यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट पापा।
0: और जाहिदा, आखिरकार बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें मना ही लिया। आरती और इब्राहिम कॉलेज ट्रिप पर नैनीताल चले गए। रोजाना उसके फोन आते, जब भी कोई नई जगह जाते तो वहाँ के बारे में बताते थे मुझे। आरती भी बहुत खुश थी। लेकिन नैनीताल से आने के 15-20 दिन बाद आरती के व्यवहार में, रहन सहन में कुछ बदलाव सा महसूस किया मैंने।
1: बदलाव? कैसा बदलाव जानकी?
0: उसका व्यवहार कुछ अलग अलग सा ही हो गया था।

0: हमेशा अपने आप में खोई खोई सी रहने लगी, कुछ बेचैन सी, गुमसुम सी, चुपचाप सी, अजीब उधेड़ बुन में लगी हुई रहती। इब्राहिम से भी फोन पर पहले से कुछ ज्यादा बातचीत करने लगी थी।
1: लेकिन फोन पर तो पहले भी इब्राहिम से बात करती होगी।
0: हाँ, लेकिन पहले हमारे सबके सामने करती थी, मगर अब एकांत में लंबी बातचीत करने लगी थी। उसकी बातों में, उसकी आंखों में काफी बदलाव सा आ गया था। हमेशा इब्राहिम के बारे में बात करती थी।
1: अच्छा?
0: उसकी बातों में मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसे इब्राहिम से प्यार हो गया है।
1: अच्छा, लेकिन प्यार होना कोई बुरी बात तो नहीं थी जानकी, और वैसे भी दोनों बचपन से दोस्त ही तो थे।
0: और मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मैंने एक दिन फोन पर आरती को इब्राहिम से ये कहते सुना।
2: इब्राहिम, एक गड़बड़ हो गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मम्मी को हमारे प्यार के बारे में शक हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या कहेगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है इब्राहिम।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैंने फौरन आरती के पास जाकर उससे बात की। वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी।
1: फिर तुमने क्या किया?
0: करती क्या, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर आरती की तुरंत शादी कर दूं। लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले मैंने एक बार इब्राहिम से बात की। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उन दोनों के बीच में सच्चा प्रेम था या सिर्फ आकर्षण। मैंने तुरंत इब्राहिम को फोन लगाया और उससे पूछा, तो वो बोला कि
3: आंटी, मैं जीसस की और आपकी कसम खाकर कहता हूँ, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं आंटी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ये प्यार कब हो गया हम दोनों को मालूम ही नहीं चला। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मैं तो खुद आपके पास आने वाला था इस बारे में बात करने, आरती के साथ। आंटी मुझ पर विश्वास कीजिए, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आंटी मुझ पर विश्वास कीजिए आप।
1: इसका मतलब इब्राहिम के दिल में खोट नहीं था जानकी?
0: हाँ जाहिदा, लेकिन अब समस्या थी आरती के पापा को समझाने की, उन्हें बताने की, जो कि बड़ा ही कठिन काम था मेरे लिए। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने उन्हें सारी बात बताई। बहुत आग बबूला हुए क्योंकि वो तो आरती को भेजने के लिए राजी ही नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें शांति से समझाया कि बच्चों से गलती हो ही गई है, अब तो इस समस्या का समाधान ढूंढना है। जवान बच्चे कल को कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, उससे पहले ही हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। घर की बात घर में ही रहेगी।
1: फिर मान गए?
0: हाँ मान तो गए, लेकिन आसानी से नहीं। कहने लगे, पहले बात करूंगा इब्राहिम से, क्योंकि पहली बात तो वो हमारी जाति का नहीं है, और दूसरी बात उसके माँ बाप का कोई पता नहीं है। सो मैंने तुरंत बुलाया इब्राहिम को ताकि शादी की बात भी पक्की हो सके और आरती के पापा को विश्वास भी हो जाए।
1: फिर
0: आरती के पापा ने मंदिर के अंदर बैठकर सारी बातें साफ साफ पूछ ली इब्राहिम से, और उसने आरती के पापा को विश्वास भी दिला दिया कि वो आरती को दिल से चाहता है और जीवन भर उसका साथ निभाएगा, हमेशा खुश रखेगा आरती को।
1: फिर आरती के पापा मान गए?
0: हाँ मान गए। हम सब की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। हम सब मंदिर से बाहर आ रहे थे और इब्राहिम को विदा कर ही रहे थे कि अचानक मुझे याद आया कि इब्राहिम का मुंह तो मीठा करा दूं। सो मैं मंदिर के पीछे घर से प्रसाद लेने चली गई, और जैसे ही घर के अंदर पहुंची अचानक जोर से धमाका हुआ, बहुत तेज धमाका था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मैं तुरंत बाहर आई, बाहर आकर देखा तो मेरे पति, मेरी बेटी आरती और मेरा होने वाला दामाद इब्राहिम तीनों ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा था, चीख पुकार मचने लगी थी, न जाने कितने ही लोगों के शव शत विशत अवस्था में जमीन पर पड़े थे। चंद दहशत

0: गर्दों की हैवानियत की वजह से न जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन खो दिया था।
1: जानकी बहन, मरे हुए उन लोगों में मेरा बेटा भी शामिल था। फादर ने यही कहा था कि मेरा बेटा भी उस विस्फोट के समय इसी मंदिर में आया था, किसी बातचीत के सिलसिले में।
0: क्या?
1: हाँ जानकी, कहीं कहीं तुम्हारा होने वाला दामाद मेरा बेटा ही तो नहीं था?
0: लेकिन लेकिन तुमने तो कभी उसे देखा ही नहीं, फिर तुम?
1: कुछ दिन पहले का एक फोटो है मेरे पास, जो मेरे शौहर मरते समय मुझे दे गए थे।
0: लेकिन लेकिन वो फोटो है कहाँ?
1: ये वो फोटो, देखो मेरे बेटे की फोटो, इसे मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ। देखो देखो कितना खूबसूरत था मेरा बेटा।
0: क्या? ये तुम्हारा बेटा है जाहिदा?
1: हाँ जानकी, यही है मेरा बेटा।
0: लेकिन लेकिन ये तो इब्राहिम का फोटो है।
1: क्या क्या कह रही हो? इसका मतलब तुम्हारा होने वाला दामाद इब्राहिम ही मेरा बेटा था?
0: हाँ जाहिदा, इब्राहिम ही तुम्हारा बेटा था।
1: और तुम्हारी बेटी आरती मेरी बहू।
0: जानकी

0: आपने सुना नाटक जाहिदा और जानकी। लेखक थे विनोद कृष्ण भट्ट। प्रतिभागी कलाकार नीना कपिल, पूजा हाड़ा, दिव्या विजय, सुब्रता पाराशर, संदीप श्याम शर्मा, तपन भट्ट, आशीष जैन, विनोद कृष्ण भट्ट और बाल कलाकार झिलमिल भट्ट, संवाद भट्ट। प्रस्तुतकर्ता एचएस व्यास।
1: अभी आप सभी ने सुना स्थानीय नाटक जाहिदा और जानकी। इसके लेखक थे श्री विनोद कृष्ण भट्ट। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 10 बजने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां कुछ ही क्षणों में।

मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, बेशक वही होता है। सामाइन खैर मकदम इस्तकबाल आप सभी का, आपकी बेहद पसंदीदा बज्म जिसका नाम है गुलिस्ता में। मैं हूं आपके साथ रहमान शेख। जिस तरह से मैंने शुरुआत की कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, बेशक, ये शेर आज शुरुआत में इसलिए क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं दौरे हाजिर में किस तरह से नफसा नफसी का आलम है,

वाह, क्या बेहतरीन नजराना। उम्मीद है आपको ये मौसिकी का नजराना पसंद आया होगा। और आइए अब बात करते हैं खून की अहमियत की। जी हाँ, ब्लड डोनेशन की। सामाइन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और उसे एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है। दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे हम किसी की जिंदगी आसान बना सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सीधे किसी इंसान की जान बचाने का जरिया बन जाते हैं। रक्तदान यानी खून देना भी ऐसा ही एक नेक और अजीम अमल है। सामाइन, विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का मकसद लोगों में रक्तदान के बारे में बेदारी पैदा करना है। नियमित रक्तदाताओं का इस्तकबाल और एहतराम करना, साथ ही जरूरतमंद मरीजों के लिए एक सेफ ब्लड की उपलब्धता को यकीनी बनाना है। समय जरा सोचिए, अगर किसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, और किसी मरीज का बड़ा ऑपरेशन होना हो या कोई बच्चा किसी गंभीर बीमारी में मुब्तला हो, ऐसे वक्त में सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है खून। उस अस्पताल में पैसा नहीं बल्कि खून की तलाश ज्यादा रहती है। अगर खून वहाँ उस वक्त मौजूद ना हो तो एक कीमती जान खतरे में पड़ सकती है। खून देने की सबसे खास बात यह है कि इंसान अपने जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा देता है, लेकिन और उसके बदले किसी की पूरी जिंदगी बच सकती है। यही वजह है कि रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। इस्लाम की तालीमात ने भी हमें इंसानियत की खिदमत का सबक दिया गया है। कुरान करीम में फरमाया गया है कि जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। रक्तदान इसी जज्बे का अमली इजहार है। इसमें ना कोई जात देखी जाती है, ना कोई मजहब, ना अमीरी और ना गरीबी। खून सिर्फ इंसानियत के काम आता है। आज भी हमारे मुल्क और दुनिया के कई हिस्सों में खून की कमी एक बड़ा मसला है। लाखों मरीज ऐसे हैं जिन्हें वक्त पर रक्त नहीं मिल पाता, खून नहीं मिल पाता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग रक्तदान से घबराते हैं, गलत फहमियां के शिकार भी हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खून देना और इससे अगर हम खून देंगे तो कमजोरी आएगी, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान सुरक्षित तरीके से रक्तदान कर सकता है। इंसानी जिस्म कुछ ही समय में इस कमी को पूरा कर देता है, इसलिए बेवजह का खौफ दिल से निकाल देना चाहिए। रक्तदान केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अखलाकी फर्ज भी है। जब हम किसी अजनबी इंसान की मदद करते हैं तो ये हमारे किरदार, रहमदिली और इंसानियत की पहचान बन जाता है। तो हमें चाहिए कि रक्तदान के बारे में सही मालूमात हासिल करें, अपने घर वालों और दोस्तों को इसके लिए तैयार करें, जब भी मौका मिले रक्तदान शिविरों में हिस्सा लें और दूसरों को भी इस नेक काम के लिए तरगीब दें। आज के नौजवान अगर ये अहद कर लें कि वो नियमित रूप से रक्तदान करेंगे तो ना जाने कितने मरीजों की जिंदगी बच सकती है। किसी अस्पताल में कोई माँ अपने बच्चे को खोने से बचा सकती है, कोई नौजवान नई जिंदगी पा सकता है और किसी परिवार की खुशियां बरकरार रह सकती हैं। आखिर में इस मौजू में यही कहूंगा कि रक्तदान केवल खून देना नहीं है बल्कि उम्मीद जगाना है, उम्मीद देना है, मुस्कुराहट देना है और किसी की जिंदगी को नया मौका देना है। तो सामईन, आज के इस अहम मौजू पर जो हमारा पैगाम है वो यही है कि रक्तदान करें, जिंदगी बचाएं। खून का एक कतरा किसी की जिंदगी का सहारा बन सकता है। अल्लाह ताला हमें इंसानियत की खिदमत करने और जरूरतमंदों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये मौजू पसंद आया होगा सामाइन। और आइए अब बात तालीम। हम सुनते हैं मोहतरमा शाह गुफ्ता नसरीन को, जो हमारे लिए लेकर आई हैं तालीम की अहमियत पर एक खूबसूरत सी तकरीर। आप सभी की नजर मोहतरमा शाह गुफ्ता नसरीन, लुत्फ उठाइए इस तकरीर का।

मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम भी लेना चाहूँगी जिन्होंने तालीम के मैदान में लाजवाब खिदमात अंजाम दी हैं। मौलाना आज़ाद हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे और उन्होंने हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम को तरक्की देने के लिए बेशुमार कोशिशें की। उनकी क़यादत में मुल्क में कई अहम तालीमी इदारे क़ायम हुए जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया और UGC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। उनका मानना था कि अगर हमें अपनी कौम को मजबूत बनाना है तो हमें अपने नौजवानों को मेयारी तालीम देना होगी। मौलाना आज़ाद का ख्याल था कि तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है और उस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तालीमी निज़ाम में यकसानियत और मेयार को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जिनमें बुनियादी तालीम से लेकर आला तालीम तक के मौके फराहम करना शामिल है। आज हम मौलाना आज़ाद की तालीम के लिए किए गए उन कारनामों को याद करते हैं और उन उसूलों को अपनाने की ज़रूरत महसूस करते हैं। हमें तालीम की अहमियत को समझना होगा और ये अहद करना होगा कि हम तालीम हासिल करके अपनी कौम की खिदमत करेंगे और उसे तरक्की की राह पर ले जाएंगे। तालीम हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है जो न सिर्फ उसकी शख्सियत की तामीर में मदद देती है बल्कि एक बेहतर मुआशरे और मुल्क की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करती है। तालीम इंसान को शऊर फहम और आगाही फराहम करती है जिसकी बदौलत वो अपने इर्द गिर्द के हालात को बेहतर तौर पर समझ सकता है और अपने मुस्तकबिल को संवार सकता है। तालीम के बग़ैर इंसान महदूद ख़यालात और कम इल्मी के बाइस तरक्की की राहों से दूर रहता है और अर्ज़ किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का तालीम की अहमियत के मुख्तलिफ पहलू हैं जैसे फ़िक्री तरक्की। तालीम इंसान के जहन को खोलती है उसे सोचने समझने और नए जावियों से हालात का तज़िया करने की सलाहियत अता करती है। एक तालीम याफ्ता शख्स चीज़ों को महज सतही तौर पर नहीं देखता बल्कि उनके पीछे मौजूद हकीकत को जानने की कोशिश करता है। एक और पहलू है इक्तिसादी तरक्की। तालीम की बदौलत इंसान अपने लिए मुआशी तरक्की के मौके पैदा कर सकता है। मुख्तलिफ महारतें और जदीद उलूम हासिल करके इंसान बेहतर रोज़गार और कारोबार के मौके हासिल कर सकता है चूँकि उसकी ज़िंदगी में खुशहाली और सुकून लाने में माविन साबित होती है। तालीम अखलाकी और रूहानी तरक्की का पहलू भी बहुत अहम है। तालीम न सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी बल्कि अखलाकी और रूहानी तरक्की में भी मदद देती है। ये इंसान को अखलाकी उसूलों और इकदार का शऊर देती है जिसे एक मजबूत किरदार तश्कील पाता है। तालीम याफ्ता शख्स अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता है और अपने अखलाकी फ़राइज को बेहतर तरीके से निभा सकता है। तालीम की अहमियत का एक पहलू कौमी तरक्की भी है और माशरती तरक्की भी तालीम ही से मुमकिन है। तालीम ही है जो ख्वाब को हकीकत बनाती है और तालीम ही है जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाती है। सामईन अर्ज किया है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है ज़मीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है। इल्म सही सोच देता है और सही सोच सही ज़िंदगी देती है लेकिन आजकल की ज़िंदगी में ये भी देखना है कि व्हाट्स द सोर्स ऑफ नॉलेज यानी इल्म का सही ज़रिया भी अहमियत रखता है। आज की जनरेशन सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गूगल बाबा और यूट्यूब को ही अपना हमसफ़र तस्लीम करते हैं और अपने इस हमसफ़र पर किसी भी किताब और किसी भी उस्ताद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। किताबों से दूर हो रहे हैं मुताले से बच रहे हैं जिसकी वजह से जो इल्म हासिल किया जा रहा है वो सतही है उसमें कोई गहराई नहीं है। हमें

अभी आप हमारे जयपुर केंद्र से सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10:29 हुए हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारे स्टूडियो से सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे रीता गांगुली को, उनके गाए ख्याल दादरा और ठुमरी को।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10:30 होने को है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा रीता गांगुली को। आप सुनेंगे दादरा जिया मोरा लहराए।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, इन्हें सुन रहे थे आप रीता गांगुली को और उनके गाए दादरा ठुमरी को। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, रात्रि के 11 बजने को है। अब सुनिए दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक

0: स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में डीआरडीओ की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakil. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana.